FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 5:56:33 और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हमारी आज की प्रसारण सभा में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।

0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM सौदशल दो मेगा हर्स पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से ठीक 6:05 पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले माँ भारती की ये वंदना।

गीता में निष्काम कर्म की बड़ी महिमा बताई गई है। निष्काम कर्म का महत्व केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से ही नहीं है, प्रत्युत हमारे भौतिक जीवन में भी इसकी महत्ता निर्विवाद है। भौतिक जीवन में निष्कामता हमारे कर्मों को पूर्णता प्रदान करती है, उससे प्राप्त होने वाले फल के चिंतन में व्यर्थ समय गंवाया करते हैं। अतः निष्काम कर्मरूपी सिद्धांत का भौतिक पक्ष कहता है कि पूरी शक्ति के साथ कर्म करते चलो, उसका उचित फल तो कर्म के न्याय के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा ही। व्यर्थ के फल चिंतन में समय न गंवाओ, फल के बारे में सोचते रहने से मन भटक जाता है, हम अपना पूरा मन कार्य में नहीं लगा पाते, इसलिए वह फल की चाह करने से हमें रोकता है। निष्काम कर्म का आध्यात्मिक पक्ष यह कहता है कि ईश्वर समर्पित बुद्धि से जीवन के सब कर्म करो, अर्थात कर्म तो करो और पूरी शक्ति के साथ करो, पर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। यह दृष्टिकोण हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए किसी ने पूरे मन प्राण के साथ एक कर्म किया और अंत में इतने प्रयत्न के बावजूद उसे असफलता हाथ लगी। जो व्यक्ति निष्काम कर्म का विश्वासी नहीं है उसकी क्या दशा होगी? वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वह समाज को दोष देगा, वह हताश हो जाएगा और संभव है जीवन से भी निराश हो जाए। भौतिकवादी लोगों के जीवन में हम असफलता जन्य या निराशा प्रायः देखा करते हैं। एक बार असफल होने पर वे पुनः खड़े होने में समर्थ नहीं हो पाते। अब उनको देखें जो निष्काम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों के फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति असफल होता है तो वह सोचता है कि ईश्वर इच्छा से हुआ, वह संतोष कर लेता है कि इस असफलता से ईश्वर उसका मंगल ही करेंगे, और इस प्रकार अपने आप को टूटने से बचाकर वह ईश्वर पर अधिक विश्वास के साथ दुगने उत्साह से अपने कार्य में लग जाता है। जब उसे सफलता मिलती है तो उसे भी वह ईश्वर की कृपा समझता है और अपने आप को एक निमित्त मात्र मानता है। दोनों ही स्थितियों में कर्म का लेप उस पर नहीं लग पाता, से यात्रा करके गंतव्य पर पहुंच जाते हैं।

0: फिर ईश्वर तो कल्पना की उपज है नहीं, वह जीवन का शाश्वत सत्य है, वह अखिल शक्ति का स्रोत है। निष्काम कर्म जहां हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, वहां हमें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बनाता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीत व्यापार।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

0: श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम कृषि सामायिकी, जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम कृषि सामायिकी में डॉक्टर ए एस यादव।
1: किसान किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही बोनी का समय आता है, हमारी जो खेतों में बोनी की अनुकूल स्थिति बनती है, तो हमारे किसान भाई जो विभिन्न प्रकार की जो हमारे जो अंचल में जो फसलें लगाई जाती हैं, उनकी बोनी के लिए की तैयारी करेंगे। तो उससे पूर्व मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि वो बोनी से पहले फसलों में टीकाकरण जरूर करें। टीकाकरण का से मतलब मेरा जो है बीज का उपचार करने से है। जिस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हमारे यहाँ विभिन्न फसलों में जो आती हैं, उन समस्याओं को सही तरीके से कैसे उनका हम प्रबंधन करें, जिससे कि आगामी जो समय है या खड़ी फसल में इन समस्याओं से हमारे किसानों को रूबरू ना होना पड़े तथा जो समस्याएं हैं उनको पहले से ही हम रोक सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम बोनी से पहले अपनी फसलों में के बीज को जो है उसको उपचारित करके फिर बोनी करें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे कुछ बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां आती हैं, जो फफूंदी जनित होती हैं, जो फफूंदी की वजह से जो है फैलती हैं, इसी प्रकार कुछ कीट जनित समस्याएं होती हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर हम पहले से ही बीज को उपचारित करके अगर बुवाई करते हैं तो ये समस्याएं हमारी फसलों में नहीं आती हैं, हमारी फसल का अंकुरण अच्छा होता है तथा जो नुकसान होता है इन समस्याओं से उस नुकसान को हम पहले से रोक सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए मैं किसान भाइयों यहाँ यह कहना चाहूंगा, अगर हम फसलों में बीज को बोने से पहले उसको उपचारित कर लें या उसका टीकाकरण कर लें तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए हम तीन चीजों का उपयोग में लाते हैं, जैसे जो फफूंदी जनित जो बीमारियां होती हैं या जो रोग आते हैं उनके नियंत्रण के लिए हम जो है फफूंदी नाशक दवा से बीज उपचार करते हैं। इन फफूंदी नाशक दवाओं में आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, जैसे कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, बीटावैक्स पावर है, और साथ ही साथ कुछ जैविक फफूंदी नाशी भी आते हैं, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा वेडी है। इनका उपयोग हम जो है बीज उपचार में कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम और थायरम, ये हम 2 ग्राम आपका जो है थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम अगर ले लेते हैं तो इससे हम बीज उपचार कर सकते हैं। अगर थायरम हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम जो है 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का उपयोग जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं। कार्बोक्सिन का अगर हमें उपयोग करना है तो 2 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम उपयोग करते हैं तो जो कई बहुत सारी जो समस्याएं जो फसलों में आती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं, इनसे हम जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम जो है कई ऐसी समस्याएं होती हैं विभिन्न फसलों में जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ कीट जनित समस्याएं होती हैं, जैसे इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हमारे यहाँ जो है सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, मूंग और उड़द की फसल लगाई जाती है, तो इसमें पीला मोजेक रोग आता है। ये जो रोग होता है ये कीट जनित समस्या है, क्योंकि सफेद मक्खी एक कीट होता है जो इस रोग को फैलाने का में बाहक का कार्य करता है। तो ये जो रोग है हमारी फसल में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम अगर कीटनाशी दवा से भी अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो ये रोग जो है हमारी फसलों में नहीं आता है। इसके लिए थायमेथग्जाम 70 WS के नाम से कीटनाशक आता है, जिसको 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम जो है सोयाबीन, मूंग और उड़द में अगर बीज उपचार कर लें तो ये पीला मोजाइक रोग जो फसल में जो आता है इसकी संभावना को हम जो है कम कर सकते हैं, इस रोग को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार हम जो उर्वरक का हम जैसे उपयोग करते हैं, हम विभिन्न फसलों में अलग अलग उर्वरक डालते हैं, तो इस उर्वरक की हम उपलब्धता को हम कैसे बढ़ाएं, उर्वरक की जो है मात्रा को कैसे कम करें जिससे कि हमारी लागत में कमी आए, उसके लिए भी हम जो है अगर जो है जो कल्चर जो हमारे आते हैं जैविक जो कल्चर होते हैं अगर उनका उपयोग हम बीज उपचार में कर लें तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो राइजोबियम कल्चर आता है जो हम दलहनी फसलों में जिसको लगा सकते हैं, जो 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपयोग में लाते हैं। जो हमारी अदलहनी फसलें हैं उनमें हम जो राइजोबियम की जगह एजोटोबैक्टर कल्चर का उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार हम जो है PSB कल्चर आता है जिसको हम फास्फोरस घुलित बैक्टीरिया बोलते हैं, ये इसका भी उपयोग अगर हम बीज उपचार में करते हैं तो मिट्टी में जो पड़ा हुआ जो हमारा स्पोर है, जो हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं जैसे आपका DAP है या जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके माध्यम से जो हम मिट्टी में डालते रहते हैं विभिन्न फसलों में, तो ये जो उसमें जो फॉस्फोरस जो तत्व होता है, ये जो एक ऐसा तत्व है जो चलायमान नहीं है, जो पौधे की जड़ अगर इसके पास नहीं पहुंच रही है तो वहां से वो मिट्टी के साथ जो चिपक कर वहां फिक्स हो जाता है। तो अगर हम जो है PSV कल्चर से बीज उपचार

0: कर लेते हैं तो उसमें कुछ एंजाइम की एक्टिविटी होती है, उससे और वो जो जो फास्फोरस में पड़ा हुआ है उसको जो है वापस जो है घोलकर पौधे को उपलब्ध कराता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामग्री। अब सुनिए कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद संस्कृत में समाचार होंगे, 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 7:05 पर लघुवार्ता आप सुनेंगे, लघुवार्ता का विषय रहेगा वसुंधरा, और 7:10 पर प्रादेशिक समाचारों का कार्यक्रम हम भोपाल से प्रसारित करेंगे, और 7:20 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से करेंगे, 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग के आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ठाकुरलाल राठौर, राजेंद्र कुमार भार्गव के गाए हुए कुछ लोकगीत। हम 9:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर आएंगे और आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के कुछ गीत। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी होगा 10:00। कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा भोसले को, तो जरूर सुनिए 10:05 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आशा भोसले के गाए हुए कुछ गीत। 10:30 पर फिल्म संगीत आपकी फरमाइश का कार्यक्रम हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आएंगे और आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के कुछ गीत। 11:00 से आप लगातार सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम
2: जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं संप्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जकसांस्कृतिकप्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः, तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 निगडिताः। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं

0: शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीयदेशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीयचरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है वसुंधरा। श्रोताओ, ये वसुंधरा, ये धरती, ये पर्यावरण, ये हमारा असली घर है और इस घर को किसी की नज़र लग गई है, या यूं कहिए कि हमारी लापरवाहियों ने इसे व्यथित कर दिया है। यूरोप की गर्मी का एहसास तो आपको होगा ही, तूफानों का असर आपको समझ आ ही रहा होगा, भूस्खलन, बारिश का खंड खंड होना, ये सब इस प्रकृति की भाषा है जो ये आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो तकलीफ में है, संकट में है। और उसकी संकट की वजह है हम इंसान। हम इंसानों ने अंधाधुंध भागे चले जाने की होड़ में क्या कुछ नुकसान कर दिया, उसका आकलन करने की जरूरत ही नहीं समझी। यही वजह है कि आज पर्यावरण हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्यावरण अगर हमसे दूर गया तो हम इंसानी जान कहाँ जाएंगे, ये विचार करने की बात है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को सब कुछ देना चाहते हैं, धन संपदा, यश, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, परंतु स्वस्थ जीवन देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते तो सबसे प्राथमिक अपने पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा और संरक्षण करते। हमने आज ताल, तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी, इन सब को घायल कर दिया। आज ये सिकुड़ सिकुड़ कर सांसें लेने को मजबूर है। आपको लगता नहीं है कि अगर ये सिकुड़ सिकुड़ कर सांसें लेंगे तो फिर हम भला कैसे स्वस्थ सांस ले पाएंगे? पेड़ कितने जरूरी हैं हम भली भांति जानते हैं, लेकिन उनका संरक्षण करना भूल जाते हैं। तालाब आवश्यक है क्योंकि गर्मी को शांत करने की क्षमता रखते हैं, प्यास बुझाने की ताकत रखते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। जानते हैं, सब जानते हैं, बातें भी करते हैं, अपितु संरक्षण करना भूल जाते हैं। नदियां, उन्हें दूषित करना हमारी आदत बन चुकी है। हम अपनी गंदगी को पर्यावरण के हवाले करके ये कहते हैं कि अब तुम इसका निस्तारण करो। गंदगी हमारी है और निस्तारण पर्यावरण करेगा, ये आदत हम इंसानों की जिंदगी पर बनाई है। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो आज की स्थिति ये बताती है कि हम इंसानों की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें प्रकृति अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है, या हमने इन लापरवाहियों को अंजाम देकर प्रकृति को रौद्र रूप धारण करने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही परिणति है, यही हो भी रहा है। आप आसपास अगर महसूस करने की कोशिश करें तो आपको बढ़ता हुआ तापमान, झुलसा देने वाली गर्मी, लगातार पड़ती उमस, आसमान में बादल और बादलों से पानी की उम्मीद करना हमारी आदत बन गई है। लेकिन हम अभी भी सचेत होने की स्थिति में नजर नहीं आते, जो गंभीर बात है। अगर आज भी हम और आप इंसान नहीं संभले तो स्थितियां बेहद तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। हमारी गलतियों की सजा हमारा पर्यावरण भुगत रहा है और वो पर्यावरण आज हमसे हमारी इंसानियत मांग रहा है। हम इंसानों का कर्तव्य है कि जिस पर्यावरण, जिस धरती, जिस वसुंधरा, जिस माँ के आंचल में हम पलते फूलते हैं, उसका संरक्षण करें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में इस प्रकृति को बचाएं, इस पर्यावरण को, इस वसुंधरा को बचाएं, क्योंकि ये वसुंधरा ही है जो हमारे जीवन को संरक्षित करती है। तो क्या इस वसुंधरा को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर है तो फिर देर नहीं, अमल में लाने की जरूरत है। और अगर हमने अब भी देर की तो आप यकीन जानिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे, जो उसके स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ होगा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन

0: पर्व है उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा

अम्गाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: दोस्तों, प्रार्थनाएं लौटती हैं, कभी कृपा बनकर तो कभी सहारा बनकर। इसलिए कोशिश करें कि मन सदा प्रार्थना और कृतज्ञता से रत रहे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में।
1: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। 7 बीज हुए हैं और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे सुबह 8:30 पर। फिलहाल फिल्म संगीत का लुत्फ लेते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला और प्यारा संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया मुझे एक शर

0: अरे अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया।
1: ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
0: ये सब सावन का कसूर है।
1: नहीं नहीं
0: तौबा।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर, और आकाशवाणी से प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार शिवपुरी जी। हाँ, मैं हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और यकीनन देश, समाज और परिवार के लिए काम कर रहे होंगे। शुरुआत बहुत अच्छी करने की कोशिश करते हैं और आपको इस उम्मीद के साथ जगाने की कोशिश करते हैं कि आप एक पौधे को वृक्ष बनाने के लिए संकल्पित होंगे। जी हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर हमें आने वाली पीढ़ी का जीवन बचाना है तो एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प लेना ही होगा। दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में हर रोज आपके सामने हम तरह तरह की जानकारियां लाते हैं, आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं और यही हमारा प्रयास है कि हम सुबह सुबह आपको हर उस घटनाक्रम से अवगत करा दें जो आपके आसपास घटित होने वाला है, जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं जोड़ता है। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश को हम साकार करने की कोशिश के साथ आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाएंगे पशुपालकों के घर, देंगे नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सेक्स सॉर्टेड सीमेंस की जानकारी। ये जानकारी आपको इसलिए दी जाएगी ताकि जो पशु नस्ल है उसमें बेहतर सुधार किया जा सके और दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण युवाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शुरू।

0: 9 जुलाई से 13 दिवसीय प्रशिक्षण शीघ्र कराएं पंजीयन, रोजगारमुखी कौशल विकास के लिए आवेदन आमंत्रित। तो अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कैमरा के करियर में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो ये प्रशिक्षण आपके लिए बेहद आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी शिवपुरी द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म एवं स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉलेशन एवं सर्विसिंग विषय पर 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण 9 जुलाई 2026 से आरंभ होगा। 18 से 50 वर्ष की आयु के युवा इसमें भाग ले सकेंगे और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन जरूर कीजिए। बिजली की सप्लाई आज प्रभावित किन किन जगहों पर होगी वो भी बता देते हैं। 33 केवी फतेहपुर फीडर से सप्लाई होने वाले, 11 केवी न्यू बस स्टैंड मनियर फतेहपुर फीडर मेंटेनेंस का काम आज किया जाएगा और इन फीडरों से जुड़े हुए केंद्रों पर 7 जुलाई को विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। 11 केवी न्यू बस स्टैंड मनियर फतेहपुर फीडर बंद रहने से 6 बजे से 11 बजे तक श्रीराम कॉलोनी, रघुवंशी कोठी, पौरी चौराया, गायत्री कॉलोनी, हाथीखाना, सिटी सेंटर कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, अमृत विहार कॉलोनी, बस स्टैंड से संबंधित क्षेत्र, मनियर बीज गोदाम, दुबे नर्सरी, लाल माटी, मुदगल कॉलोनी, फतेहपुर, शादा कॉलोनी, जाटव मोहल्ला, परिहार मोहल्ला, 26 नंबर कोठी के पास और इससे संबंधित क्षेत्र प्रभावित हो गए। तो आप आज ये नोट कर लीजिए कि 11 बजे तक अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको बिजली प्रवाह नहीं मिलेगा। तो अगर आपके ज़रूरी काम हैं तो आप उसके बाद या उससे पहले कर सकते हैं। अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश और फिर आपको देते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सतर्कता, सावधानी और जानकारी, यही तो हमारे इस कार्यक्रम की है पहचान और इसी कार्यक्रम को हर रोज हर नए रेडियो मित्र के साथ आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है आकाशवाणी शिवपुरी। नमस्कार शिवपुरी, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम एक और जानकारी से आपको जोड़ते हैं। लोकपथ ऐप के माध्यम से करें सड़कों की शिकायत। लोक निर्माण विभाग ने नागरिकों से सड़क संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। इस ऐप पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़क, पुल पुलिया की फोटो, जीपीएस लोकेशन अपलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी और उस सड़क को दुरुस्त करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। तो अगर आपके इलाके में कोई गड्ढे वाली सड़क है तो लोकपथ ऐप का फायदा उठाएं, शिकायत करें और अपनी सड़क को दुरुस्त कराएं। लेखा प्रशिक्षण आवेदन 15 तक किए जा सकते हैं। लेखा प्रशिक्षण शाला में नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक लेखा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इच्छुक कर्मचारी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो समय से ज़रूर आवेदन कर दीजिए। बहुत सारी जानकारियां हैं जो जानकारी आपको सीधे जोड़ती हैं और उसी से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम वो तमाम जानकारियां आपको दे दें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब जब बात जानकारियों की है तो फिर बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो हमारे पास हमेशा

आपके लिए रहती है और उन्हीं जानकारियों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रोजगार की राह कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भर बनेंगे आदिवासी युवा। रोजगार के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। रोजगारों का सृजन और तमाम उन कौशल प्रशिक्षणों से जोड़कर युवाओं को रोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने का काम करने का प्रयास है। और इसी दिशा में अगर हम इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकारी नौकरियों की कमी है, रोजगार के साधन भी कम हैं। ऐसे में सेवा भारती ने बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की तैयारी की है। पहले चरण में एक महीने के दक्षता प्रशिक्षण के लिए 15 आदिवासी बेरोजगार युवाओं का चयन किया गया। ये युवा मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण लेंगे और प्लम्बिंग का काम आसानी से कर सकेंगे, आत्मनिर्भर भी बनेंगे। छात्रावास फतेहपुर में प्लम्बिंग प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां पूरे तरीके से छात्रों को आत्मनिर्भर बनकर रोजगारों का सृजन करने और खुद प्रशिक्षण लेकर एक उत्तम कारीगर बनने की दिशा में प्रशिक्षित किए जाने का प्रयास शुरू किया गया है। इससे संबंधित अन्य जो कौशल विकास केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं, जिन्हें केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार प्रोत्साहित करती है, उनमें भी स्वरोजगार से जुड़े कई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और इन पाठ्यक्रमों में आप प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। न केवल आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सरकार का कदम है और इस कदम की सराहना करते हुए इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। अब मौसम, और मौसम जो कुछ कह रहा है वो खट्टा मीठा अनुभव करा रहा है। आसमान में बादलों का डेरा है, गर्मी की उमस है, पानी की आस है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब से थोड़े दिन बाद यानी 2-3 दिनों के अंतराल से पूरे मध्य प्रदेश में मानसूनी बादल सक्रिय हो जाएंगे और न केवल सक्रिय हो जाएंगे बल्कि अच्छी खासी बारिश करेंगे। फिलहाल हमारे क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो मौसम का अनुमान यही बताया गया है कि जिले के कई इलाकों में तेज और मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हवाओं के ज्यादा तेज चलने का अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी जरूरी है। अगर तेज हवाएं चलती हुई देखें तो अपने आप को, परिवार को, सदस्यों को सुरक्षित करने में अपना प्रयास करें। अगर बात हम आसपास गिरने वाली बूंदों के साथ जुड़ी खेती किसानों की बात करें तो किसान इस समय खेत जोतकर बोनी के लिए तैयार हैं। मौसम अनुकूल होते ही बड़े पैमाने पर शिवपुरी जिले में किसानों के खेतों में बोनी का काम भी शुरू होगा और इन सबको बारिश की बूंदों का बेसब्री से इंतजार है। और यही अनुमान है मौसम विभाग का कि अगले 1-2 दिन में मौसम चक्र में बदलाव आएगा और आसमानी बादल खूब बरसेंगे। फिलहाल ये जो जानकारियां हैं, ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी और इनका लाभ आप यकीनन उठाएंगे। जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में हमने आपको जो जानकारियां दी, अगर वो उपयोगी हैं तो उनसे जुड़कर आप आगे की जानकारी जुटाकर अपना कदम बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं, लेकिन उसी संकल्प को याद करा के जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे लिया था, वो है एक पौधे को वृक्ष बनाना, क्योंकि इस समय आपका वो संकल्प हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन दे पाएगा। आप मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए, प्रगति करते रहिए और अपने देश, समाज, परिवार के लिए काम करते रहिए। नमस्कार, शिवपुरी।

0: 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत

0: और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals, including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatnatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course educational and health sectors.
3: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's 3-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandip Bandashgupta, Akashvani News, Jakarta.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry, established by Prime Minister Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
5: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
6: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
5: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
2: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee.

0: Muskan in 53 kilogram and Kajal in 76 kilogram, who all clinched gold medals in their respective weight classes. In the men's freestyle, Sumit Kumar, Lakshman Bharaskar captured the solitary gold medal for India in the 70 kilogram category, prevailing 13-7 in a high-scoring thriller against Kazakhstan's Sunkar Sedakmet. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of second half stoppage time to secure the victory. Meanwhile, Portugal superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of 16 exit. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. Belgium defeated the United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals. Two early goals from Charles de Ketelaere and a third from Hans Wanneken gave Belgium a strong lead. Romelu Lukaku added the final goal in the last seconds. On the other hand, Malik Tillman scored the lone goal for the US in the first half. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanging playing 11 for the third T20 international. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 international on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust Chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में आप ही के पसंद के गीतों को लेकर मैं उपस्थित हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं प्यारे से इस गीत के साथ और शुरुआत में ही आपसे करते हैं चंद छोटी सी बात। ये जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बारिश का मौसम है, आसमान से बरसती बूंदों का दौर है और ऐसे में हर एक बूंद कीमती है। रिपीट कर रहे हैं कि हर एक बूंद कीमती है और इस बूंद का संरक्षण करना हमारा और आपका दायित्व है। आप यकीन जानिए कि अगर हम बरसती हुई इन बूंदों का संरक्षण कर इनका आदर सम्मान करेंगे तो ये विपरीत समय में हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे, हमारे जीवन की रक्षा करेंगी। तो बूंदों को सहेजना, पानी का संरक्षण करना और उसका वाजिब इस्तेमाल करना, ये अब हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। तो आपको हम ये याद दिलाते हुए आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बूंदों का संरक्षण ज़रूर करेंगे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतगिरी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने इस गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है। साथ ही भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश कार्तिक, परी, संजना, ललिता, नारायण खर्चे और उनके परिवार के सदस्यों ने इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र आया है लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड कंचन नगर इंदौर से। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता, नारायण खर्चे, गणेश, संजना और उनके परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना पसंद करते हैं। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से डोनी कार्तिक और उनके परिवार के सदस्यों ने इस गीत को सुनने की पेशकश की है। साथ ही इसी गीत को चांडूर बिजवा तालुका नांदुरा जिला बुढ़ाड़ा महाराष्ट्र से हमारे लिए पत्र भेजा है नारायण, रक्षा, मालती और प्रयाग चौधरी के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीकर, बलविंदर बीकर, जैतेग बिरक और मीका बिरक के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सबकी पसंद और फरमाइश पर सुनते हैं आपकी फरमाइश का प्यारा सा गीत

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। और आकाशवाणी के इस शिवपुरी केंद्र से ये जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं उसकी फरमाइश के संबंध में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से, आसमान में बादल हैं, बादल में बूंदे हैं और बूंदे बरसती हैं धरती पर, धरती पर रहते हैं हम। और अगर आप इंसानी जान की कीमत समझते हैं, इंसानी स्वास्थ्य की कीमत समझते हैं, आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, तो बूंदों को सहेजना सीखिए। आसमान से बरसती हुई बूंदों को संरक्षित करके हमारे कठिन समय के लिए उपयोगी बनाने का काम कीजिए, आपको यकीनन हमारी बात समझ आएगी। ये जरूरी है क्योंकि आज जिस दौर में हम हैं वहाँ प्राकृतिक बदलाव तेजी से महसूस किए जा रहे हैं और यही वजह है कि हम आपसे बूंदों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं गीत और फरमाइश भेजी है राजेश सावले, राजदीप राजेश राशि, श्रीमती शीतल राजेश और उनके परिवार के सदस्यों, मित्रजनों और उस क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागणों ने। फरमाइश आई है छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से और इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये जो पत्र हम तक पहुंचा है वो पहुंचा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मालती दीपक, दीप सिंह, देविंदर और अरविंदर के साथ उनके परिवार के सदस्यों का। रेगनी छत्तीसगढ़ से विनय दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा इस गीत को सुनने की फरमाइश करते हैं और इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र आया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन के साथ उनके परिवार के सदस्य और मित्रजनों ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हमें पहुंचाया है हमारे श्रोता विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से विपिन शुक्ला और उनके परिवार के सदस्य मित्रजन और उस क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागण। तो आइए आप सबकी पसंद और फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। अब आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुनिए ठाकुरलाल राठौर और राजेंद्र कुमार भार्गव के गाए हुए लोकगीत। सबसे पहले कार्यक्रम लोकरंग में सुनते हैं ठाकुरलाल राठौर के गाए हुए कुछ लोकगीत।

शुद्ध और राजेंद्र कुमार भार्गव के गाए हुए संगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, मौसम बरसात का है, आसमान से बूंदें बरसेंगी और इन बूंदों को सहेजना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संरक्षण प्रकृति और पर्यावरण के साथ पानी का भी जरूरी है, यही बात हम आपको याद दिला रहे हैं। इन बरसातों में एक संकल्प लेने की बात कर रहे हैं कि एक पौधा रोपिए, उसे वृक्ष बनाइए और बूंदों को सहेजने का काम कीजिए, क्योंकि ये बूंदों को सहेजना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पानी, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। तो ये कदम उठाना लाजमी भी है, ज़रूरी भी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों कदमों को ज़रूर उठाएंगे, पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनाएंगे और बूंदों को संरक्षित करेंगे। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में इस गीत को सुनने की फरमाइश हम तक पहुंची है। श्रीराम कॉलोनी शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, आभा भार्गव, प्रांजल भार्गव, दीपा भार्गव, गुड़िया भार्गव और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजनों से। नवाब साहब रोड से इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजते हैं अजय खेमरिया, विनोद खेमरिया, मनोरमा खेमरिया, शरद खेमरिया, पूजा खेमरिया और गुंजन खेमरिया के साथ उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन। गांधी कॉलोनी शिवपुरी से आलोक अमिंदोरिया ने इस पत्र को भेजकर अपनी फरमाइश जाहिर की है। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ विवेकानंदपुरम फिजिकल रोड शिवपुरी से पत्र आया है। हरिवल्लभ शर्मा, रेखा शर्मा, रिंकल शर्मा, ट्विंकल शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। उस क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागण भी इस फरमाइश में शामिल है। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कमलागंज घोसीपुरा से ये पत्र भेजा है नितिन शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने, गीत को सुनने की फरमाइश की है। साथ ही तुलसीनगर शिवपुरी से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गायत्री शर्मा, देविका शर्मा, मनोरमा शर्मा, अरुण शर्मा, मनोज शर्मा और राहुल शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य।

मित्रजन, इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हम तक पहुंचा है शांति नगर कॉलोनी शिवपुरी से। फरमाइश करते हैं कपिल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन। शंकर कॉलोनी शिवपुरी से मनोज भार्गव, अमिताभ भार्गव, लिली भार्गव और परिवार के सदस्य इस गीत को सुनने की पेशकश करते हैं। साथ ही गुरुद्वारा चौक शिवपुरी से इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र आया है अनिमेश जैन, राहुल जैन और दीपिका जैन के साथ उनके परिवार के सदस्य और मित्रजनों का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ न्यू ब्लॉक शिवपुरी से अरुण शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रजनी शर्मा और देवेंद्र शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य इस गीत को सुनने की पेशकश करते हैं। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये प्यारा सा गीत।

0: बैठा चुप है भैया
1: मेरा भैया।
2: हाँ हाँ तेरा भैया। हाँ हाँ मेरा भैया।
1: भैया भैया बोलो भैया।
3: बोलूं क्या मैं?

0: पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
0: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: सो योर प्लेस और माइन,
0: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
0: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षेत्रों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वन ग्राम काली माटी में गायत्री परिवार के तत्वाधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहाँ वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया के पूर्व सीएमओ डॉ. जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेट के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रूपये की लागत लगाकर 24,75,000 रूपये की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर पॉइंट, चीड़ पॉइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं श्रोताओं, और आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में सुनिए आशा भोसले को।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आशा भोसले से कुछ गीत कुछ गजलें, और इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यही संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश हम आपसे कर रहे हैं। और गुजारिश ये है कि बरसात का मौसम है, आसमान से बूंदों के बरसने का दौर है। ऐसे में एक पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प लीजिए और बूंदों को सहेजने की जिम्मेदारी। जी हाँ, ये ज़रूरी है। और अगर हम अपने जीवन के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं तो आपका ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है। और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर बूंदों को सहेजेंगे, पौधे को वृक्ष बनाएंगे और इस प्रकृति पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पत्र हम तक पहुंचा है कमलागंज शिवपुरी से। देवेंद्र सचदेवा, अजीत सचदेवा, दीपेंद्र सचदेवा और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजनों का। साथ ही गांधी कॉलोनी शिवपुरी से जितेंद्र गौड़, टीना गौड़, कैलाश नारायण गौड़, मनोरमा गौड़ और उनके परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना पसंद करते हैं। ग्वालियर बाईपास शिवपुरी से मीनू तिवारी, मुदित तिवारी और आलोक तिवारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है। गर्ल्स स्कूल रोड टेकरी से पत्र आया है हरगोविंद हरितवाल, अशोक हरितवाल, रमेश हरितवाल और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में प्यारा संगीत आप सबकी।

सारे जहां का दर्द समेट कर जब कुदरत से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये तो आंखें बना दी। बहुत दर्द, बहुत कशिश है तुम्हारी इन आंखों में। दिल के फासले एहसास से कम होते हैं।

0: समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हम जहां जन्म लेते हैं, जहां बड़े होते हैं, वो स्थान हमारे लिए स्मृतियों का एक जीवंत ग्रंथ होता है, हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला। हमारे मन का सबसे आत्मीय कोना होता है हमारा गांव, हमारा शहर। और हर गांव की एक अपनी धुन होती है, हर शहर का एक अपना राग होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, उस धुन को, उस राग को सुनते ही मन का मौसम सुहाना हो उठता है, मन खिल उठता है। सच तो ये है कि समय की अनेक परतें बिछी होती हैं हमारे शहर या गांव के आंगन में, जिसमें छिपी होती हैं हमारी परंपराओं की रंगत, उसके इतिहास की गुनगुनाहट। कभी किसी नदी का तट किसी जगह की पहचान बन जाता है, कभी उसका प्राकृतिक सौंदर्य उसकी विशेषता बन जाता है, कभी मंदिर, किले या बावड़ियां बीते कल की कहानी कहते हैं, कभी किसी लोक कला की चहक, किसी मेले की रौनक या किसी खास व्यंजन का स्वाद उस स्थान का सबसे सुंदर परिचय बन जाता है। तो आज इस फोन इन कार्यक्रम में हमें बताइए कि आपके शहर या गांव की वो कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है, या जिसकी वजह से आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना रहने का स्थान अच्छा लगता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बात आपके शहर, आपके गांव की खास पहचान के बारे में। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
2: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौरा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं
2: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
1: तो आज का जो
2: आपको बताऊँ, 2005 से आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ।
1: अच्छा, तो चलिए, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हो गए। आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके शहर, आपके गांव की। हम बात कर रहे हैं कि

0: ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध वहां का व्यंजन है ना?
1: जी हाँ
0: क्योंकि देखिए, हम तो भोपाल में रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का अवसर आता है कि बघेलखंड का कोई व्यंजन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम अक्सर जो इंद्रहर है इसकी फरमाइश कर लेते
1: जी हाँ
0: हैं तो चलिए, एक स्थान अपने व्यंजन की वजह से भी जाना जाता है, और ये भी हमारी संतोष और गर्व का विषय होता है। तो परिहार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह बने
1: अरे वाह
0: रहिए,
1: वाह, धन्यवाद
0: बने
1: धन्यवाद।
0: रहिए
1: अरे हम आज
0: आकाशवाणी।
1: 2 दिन में लगा लगाता हूँ, अक्सर बिजी रहता है।
0: हाँ, लेकिन आज बात हो गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत जायकेदार बात हुई
1: जी जी
0: बहुत बहुत
1: चलिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप मुरैना के रहने वाले हैं, खास मुरैना
1: मेरा
0: के
1: गांव
0: रहने
1: है, तरसमा गांव है मुरैना में। जी
0: मुरैना के पास तरसमा गांव में रहते हैं आप। तो
1: जी
0: देखिए, आज तो बात हो रही है आपके रहने के स्थान की, इसलिए हमने गांव को विशेष रूप से पूछ लिया कि आपका जो
1: जी
0: ये गांव है, इसकी ऐसी कौन सी खास विशेषता है जिस पर आपको गर्व है?
1: जी महोदया, मेरे गांव की खास विशेषता इस पर मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आर्मी में बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं, कम से कम 80% लोग, और 17 लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। शहीद स्थली के नाम से मेरा गांव जाना जाता है।
0: अच्छा,
1: जी
0: 17 लोग शहीद हुए हैं।
1: शहीद हुए, पूरे प्रदेश में पहला गांव इतने सर्विस में, अर्धसैनिक बलों में, सैनिक बलों में, कहीं नहीं, किसी गांव में नहीं था।
0: क्या बात है। तो इस गांव की माटी को हम नमन करते हैं, इस गांव की जो माताएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हम नमन करते हैं कि इतने बच्चों की शहादत के बाद भी एक वो जज्बा आपके भीतर है कि देश की सेवा करना है हमारे बच्चों को, और आप सेना
1: जी
0: में अर्धसैनिक
1: एक
0: बलों
1: एक
0: में
1: एक
0: भेजते
1: एक घर
0: हैं।
1: में चार चार बच्चे अभी अर्धसैनिक बलों, मेरे भी 3 बच्चे अर्धसैनिक बलों में सर्विस कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा हमें हरविलास जी आपसे बात करके।

0: टू यू।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सुनीता मैडम जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम आदाब। और मैं भगवान से प्रार्थना दुआ कर रहा था कि आज हमारी सुनीता मैडम जी से बात हो जाए, तो हो ही गई। कहते हैं लागी लगन हो गया सगुन
1: जी।
2: और मेरा मन हो गया मगन आपसे बात करके। और हम तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल के गुण गाने लगे
1: क्या बात है
2: और गाते थे और गाते रहेंगे।
1: तो एक

0: एक लगन लगी थी मीरा को, दूसरी लगन लगी है आपको, ये हमें समझ में आया
1: अरे
0: है।
1: तो
0: तो अपना परिचय तो पूरा दे दीजिए।
1: परिचय बता दूं, कहते हैं ठंडी भी थी और गर्मी भी थी, और अब आ गई बरसात, और मौसम चाहे जो भी हो, हम सुनीता मैडम जी के हमेशा साथ।
0: बिल्कुल।
1: और अब पता बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, ईडन गार्डन अशोक वाटिका बोल रहा हूँ। अभी ईडन गार्डन बता दिया, अशोक वाटिका बता दिया, तो सब कुछ आ गया समझ लो, और हिंदुस्तान के दिल से बोल रहा हूँ।
0: तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने कल्पा बताया, सतना के पास से आप बोल रहे हैं, और आज का जो विषय है वो आपके गांव, आपके शहर से ही जुड़ा हुआ है। आप हमें बताइए कि आपके शहर, आपके गांव की क्या खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आपको गर्व का अनुभव करवाती है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: हमारे गांव ग्राम कल्पा जिला सतना की बात की जाए, छोटा सा कस्बा है मैडम जी, और यहाँ के जो लोग बाग हैं, महिलाएं हैं, और बहुत ही भक्ति संगीत से ओतप्रोत हैं, जो देवी देवताओं की पूजा इबादत करती हैं और सभी
0: जी।
1: लोगों को मानती हैं जी जान से। और हमारे गांव के आसपास सबसे बड़ा जो है, कहते हैं कि आम का कटोरा कल्पा, आम की यहाँ प्रसिद्धि है, आम और कैथा, इमली और जामुन
0: वाह, तो कौन सा आम
1: मशहूर
0: होता
1: है।
0: है?
1: मैं बता दूं कि यहाँ इतने जबरदस्त आम के बगीचे हैं, गार्डन है पूरा, दोनों तरफ से नदी नाले बह रहे हैं, इसीलिए कहा करता हूँ कि लंका में अशोक वाटिका था और कल्पा में चांद मोहम्मद का कल्पा।
0: हाँ, सतना में कल्पा है। तो आपने कहा कि आम के बहुत से बगीचे हैं, और कैथा, और इसके अलावा क्या है?
1: इमली और जामुन
0: तो ये तो फल फूल से भरा हुआ आपका गांव है। तो
1: जी।
0: कौन कौन से आम होते हैं आपके गांव में?
1: आम तो अब सुनीता मैडम जी बता दूं, यहाँ देसी आम ही होते हैं, पर बहुत ही लाजवाब होते हैं, उसका टेस्ट और स्वाद जो है, यहाँ के आम हमारे ज्यादातर वहाँ कानपुर भेजे जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ बांदा।
0: क्या बात है। तो देखिए, मौसम भी आमों का है ही, और स्वाद ले रहे होंगे आप आम का। आपने बात की तो हमारा भी जो मुंह है वो मीठा हो
1: अगर वक्त
0: गया।
1: मिला सुनीता मैडम जी, तो मैं आपके लिए आम जरूर अपने कल्पा के भेजूंगा, फिर उसका टेस्ट और स्वाद बताइएगा, बहुत ही लाजवाब आम होते हैं देसी, और उसका पना खाइए, मजा आ जाता है, सेहत से भरपूर, और सेहत से भरपूर आप हैं। जब कार्यक्रम में आती हैं तो चांद तो एक ही है, पर जब आप कार्यक्रम में आती तो हजारों चांद उतार आते हैं।
0: क्या बात है। तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने अपने गांव कल्पा के विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप कहीं बाहर जाते होंगे तो गांव की याद आती होगी।
1: अरे आम बस का नहीं मैडम जी, मैं बता दूं मेरे ग्राम कल्पा की एक खूबी और बता दूं, यहाँ पर सबसे मेन खूबी है मैडम जी कि ना तो ठंडी होती है अधिक, ना अधिक गर्मी होती है, और ना अधिक बरसात, सब कुछ मीडियम होता है।
0: तो मतलब एक पूरा मौसम का संतुलन आपके गांव में बना रहता है ना, ये बहुत
1: सब
0: अच्छी
1: कुछ
0: बात
1: है।
0: है।
1: और मैं एक बात और बता दूं कि आसमान के तारों की गिनती शायद है,
0: जी
1: और समुद्र की गहराई का अनुमान 9,999 मीटर की गहराई का अनुमान मैं बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात, और मुझे जितना प्यार आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से है, उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।
0: जी तो चांद मोहम्मद खान जी, आकाशवाणी से आपका जो प्रेम है उसको बना कर रखिए। आपने आज हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: वाह, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जी बोल रहे हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, और बारिश होना भी अब तो शुरू हो गया है।
0: तो कैसा है आपका बेमेतरा बारिश में?
1: बहुत हो गया है, मतलब कहें तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रहा है।
0: तो ये अच्छी बात है कि चलिए बारिश तो शुरू हुई। हम आज जो
1: जी
0: बात कर रहे हैं, आपके गांव की, आपके शहर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको गर्व है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: अब हमारा यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है, लगभग 1,000 की जनसंख्या है, और हमेशा से शांति प्रिय रहा है गांव। कभी किसी तरह का नैतिक व्यवहार या उस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं आज तक।
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: अदर अदर मतलब सभी समूह के लोग रहने के बावजूद भी गांव काफी बढ़िया है।
0: जी और आसपास कोई ऐसा धार्मिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, कोई नदी हो?
1: हमारा जो जिला है बेमेतरा, वो गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ माता शीतला और माता भद्रकाली शक्तिपीठ विराजमान है,
0: क्या बात है, तो माता शीतला और माता भद्रकाली का मंदिर है
1: भद्रकाली।
0: आपके गांव के पास। तो
1: जी,
0: किन-किन अवसरों पर कोई खास आयोजन होता है? नवरात्रि में तो होता ही होगा।
1: नवरात्रि के अवसर पर ही होता है, मतलब वही अप्रैल में एक बार, और उधर मान के चलिए
0: अक्टूबर में?
1: सितंबर अक्टूबर के
0: जी
1: आसपास।
0: जी जी जी और इसके अलावा कभी मेले वगैरह भी लगते हैं आपके गांव में?
1: मेला जो होता है पास में ही लगता है, मतलब गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है, और गांव में जो होता है वो मड़ई महतर होता है, मतलब जो
0: मड़ई।
1: एक्टिविटी वाला।
0: हाँ जी, तो ये जो मड़ई है ये भी मेले का एक छोटा रूप है ना?
1: हाँ जी, एक छोटा रूप है, और ये ज्यादातर दीपावली के आसपास ज्यादा होता है।
0: तो इस मड़ई में कोई खास क्या रौनक होती है?
1: रौनक तो यही है कि अब साल में एक बार होता है करके लोग आते हैं,
0: जी
1: रिश्तेदार भी आते हैं, और जो भी उसकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से मतलब करते हैं। जैसे दीपावली हो गया, दीपावली में जो हमारा गोवर्धन पूजा होता है, उसमें हमारे जो पशु होते हैं गाय बछड़े,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उनका विशेष महत्व होता है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो उस अवसर पर आप लोग एकत्रित होते हैं और पशुओं की पूजा करते हैं, पशुधन की।
1: बिल्कुल,
0: तो योगेश जी, आपने बताया कि आपके गांव के पास शक्तिपीठ हैं, देवी के दो मंदिर हैं, और इसके साथ ही अपने गांव में लगने वाले मड़ई की आपने बात की जिसकी रौनक हमारे स्टूडियो तक भी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बने रहिए इसी तरह आकाशवाणी के साथ।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार, विराट नगरी है हमारी।
0: बाग जिला धार से आप बोल रहे हैं।
1: हाँ हाँ।
0: तो ये बताइए कि आपके गांव की कौन सी ऐसी खास बात है जिस पर आपको गर्व है?
1: हमारे गांव का विश्व प्रसिद्ध एक बाग गुफा है सर जी, पांडव गुफा बोल।
0: जी जी जी जी जी, आपने धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की चर्चा की जो कि मुख्य रूप से अपनी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रकला और शैलकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और बहुत पुरानी गुफाएं हैं ये, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की ये गुफाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इस वजह से आपको अपना गाँव, अपना शहर अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
1: और हमारी बागनी नदी पे महादेव बसे हुए, जबड़ेसर, अन्नेसर, नीलकंठेसर, भूतेसर और महाकालेसर।
0: क्या बात है,
1: बागनी नदी के तट पे।
0: जी जी जी जी, बागनी नदी है।
1: बागनी नदी है सर जी, नर्मदा में इसका संगम है, निसरपुर में।
0: तो चलिए अनोखे सिंह जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया जिस पर आपको गर्व है।
1: बड़केसर है, खेड़ापति हनुमान है, ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है सर जी,
0: जी
1: गंगा
0: कोई
1: धाम है।
0: जी, तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं आपके गांव के आसपास, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें।
1: सर जी किला है हमारे नगर में सर जी।
0: जी जी,
1: और हमारे यहाँ संचालन, हमारे जो सक्षम लोग है सर जी, वो अन्य लोगों को सामूहिक लेके बहुत अच्छे से चलते है। भंडारा होता है जीरो वाले हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, गंगा कोई धाम, तो सब आम जन को

0: मंदिर करके बहुत अच्छी सी सुविधा व्यवस्था की जाती है।
1: बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक आयोजनों में, भंडारे में आप सब एकत्रित होते हैं और प्रेम के साथ अपना एक समय गुजारते हैं, भक्ति और आस्था के साथ, आनंद के साथ। तो ये आनंद आपके जीवन में बना रहे, ये आस्था आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो,
1: हाँ जी मैम।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, अमर सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ मैम, कटनी ग्राम डिठवारा से। जी
0: अमर सिंह राठौर जी, आप
1: जी
0: बोल
1: जी
0: रहे हैं बिठवारा से, कटनी के पास ही
1: जी
0: गांव है। कैसा है
1: जी
0: आपका गांव? क्या खास बात है इस गांव की?
1: मैम, मेरे गांव के पास मैम पुरातत्व विभाग का जुगिया बाबा के स्थान है मैम।
0: जुगिया बाबा।
1: जी, प्राचीन विष्णु मंदिर था वहाँ पे। आज भी वहाँ पे पुरातत्वकालीन की ईंटें, छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं और स्थान उनका बना हुआ है। और प्रतिमाएं तो चोरी चली गई हैं आज से करीब 20-25 साल पहले।
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: प्रतिमाएं थी, 5-5 फुट की 2-3 प्रतिमाएं थी, हमने देखा है उनको। और वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अच्छा मेला लगा करता था, खूब बच्चे
0: अच्छा
1: लोग नृत्य हुआ करते थे। हम
0: अच्छा
1: लोग के यहाँ दिवारी का नृत्य होता जो फेमस है हमारे गाँव में।
0: देवारी लोक नृत्य,
1: हाँ, जो यादव लोग करते हैं ना, ग्वाल लोग।
0: ये दिवाली के आसपास करते हैं ना?
1: जी, हाँ, वो मकर संक्रांति के टाइम भी वो लोग वहाँ नृत्य किया करते थे।
0: अच्छा, तो
1: और
0: दीपावली के आसपास भी करते हैं और मकर
1: जी,
0: संक्रांति के
1: समय
0: अवसर पर
1: होता
0: भी
1: था
0: करते
1: बात
0: हैं। कैसी वेशभूषा होती है उनकी?
1: शायद मैम, वो मोर पंख वगैरह लगाते हैं,
0: जी
1: लड़ियां पहनते हैं,
0: हाँ,
1: लच्छेदार, वो बड़े अच्छे उनके बस चमकीले टाइप के रहते हैं,
0: जी।
1: पंख पंख लगा के नाचते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अरे,
0: अब
1: ढोला की थाप बजती है, मदार उनकी,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छा लगता
0: वाह
1: है।
0: वाह, ढोलक मादर के साथ दीवारी नृत्य।
1: जी
0: आपने तो एक बिल्कुल सुंदर सा एक दृश्य खींच दिया है। वैसे
1: जी
0: मुझे जो हल्का सा याद आता है कि यही लोग शायद दीपावली के अगले दिन आकर घरों की नजरें भी उतारते हैं ना?
1: हाँ, जी, मैम, बिल्कुल बिल्कुल, यही लोग करते
0: है ना,
1: हैं।
0: बताइए कैसी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शुभ मंगल की कामना है कि दीपावली के बाद ये आते हैं यादव समुदाय के लोग
1: जी,
0: और
1: मैम,
0: घरों में, अलग अलग घरों में जाते हैं और उन घरों की नजर उतारते हैं,
1: हाँ,
0: है
1: ये
0: ना?
1: होता है मैम। गांव में तो अक्सर होता है, शहर में तो नहीं पता,
0: जी जी
1: पर
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में तो हर घर में वो लोग आते हैं
0: क्या बात है।
1: और
0: तो
1: उपहार वगैरह ले जाते हैं घर से वो लोग,
0: हाँ हाँ
1: उनका ये
0: बिल्कुल
1: पूरा निश्चित रहता है।
0: जी। तो अमर सिंह राठौर जी, आपने बिठवारा गांव की जो विशेषता बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मूर्तियां अब नहीं है वहां, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल ये है ना? और आपने मेले की बात की और देवारी नृत्य की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें आपके गर्व का विषय हैं। तो ये गर्व आपके मन में बना रहे, अपने स्थान से प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम। मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता बोल रही दीदी, छत्तीसगढ़।
0: कोदवा साजा छत्तीसगढ़।
1: हाँ दीदी,
0: अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की, आपके
1: दीदी
0: छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़ तो हमारा यहाँ भाषा भी प्रिय है, छत्तीसगढ़ी बोली जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया।
0: हाँ, छत्तीसगढ़िया
1: हाँ
0: सबसे
1: दीदी,
0: बढ़िया,
1: यहाँ यहाँ का जो
0: बिल्कुल।
1: अपना चावल जो रात में डुबाते हैं ना बासी, उसी ज्यादा फेमस है दीदी छत्तीसगढ़ में। बासी बोरे बासी बोलते हैं जिसको।
0: बासी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ दीदी, हाँ
0: तो
1: यहाँ
0: आप
1: का जो अपना सब्जी है भाजी जिसको बोलते हैं हरी हरी सब्जी है ना, हाँ यहाँ फेमस है अपन छत्तीसगढ़ में खाने का
0: तो ये
1: रीता।
0: भाजियां आपको अच्छी लगती हैं और बासी खाने की एक परंपरा है वहां पर, है ना
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी।
1: और यहाँ तो त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब कलेवा बनाते हैं दीदी,
0: क्या क्या बनाते हैं?
1: जैसे अपना तीजा पोल आ गया जिसको खुरमी ठेठरी बोलते हैं, चावल अपना इसका गेहूं आटा बनाते हैं दीदी, उसमें अपना खुरमी, अच्छा चना बेसन का जो इसमें बेल के लंबा लंबा ठेठरी बनाते हैं, उसके इधर बहुत
0: जी
1: प्रचलन है दीदी छत्तीसगढ़
0: जी
1: में
0: जी
1: तो।
0: जी तो बहुत से पारंपरिक आपके जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग
1: हाँ
0: त्योहारों
1: दीदी, हाँ
0: में।
1: छत्तीसगढ़ में होता है
0: आपने
1: बहुत।
0: बोली भाषा की बात की, छत्तीसगढ़ी बोली की बात की है, तो हमें
1: हाँ
0: लगता है कि कुछ पंक्तियां आप छत्तीसगढ़ी में बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: दीदी, अब ठीक है चलो बोल ही रहा हूँ मैं आपसे दीदी, आपसे मैं तो बोला था छत्तीसगढ़ी भाषा में है ना। हाँ आप मन बढ़िया, आप अच्छा रहा, अच्छा से बढ़िया, भैया मन से भी रहा, बढ़िया बात करत हम तुहर मन से, मन अच्छा लगत है मतलब जुड़ के तुहर मन से, आप मन से जुड़ के अतका प्यारा प्यारा प्यारा बात सुने मिलते हमारा आकाशवाणी भोपाल में, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गीत भी सुने मिलते हमारा।
0: बहुत बढ़िया, तो आपने भाषा बोली का एक रंग हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब बोला तो मुझे तीजन बाई जी की याद हो आई,
1: हाँ दीदी, इनका
0: का
1: देहांत हुआ दीदी
0: जी
1: तीजन
0: जी
1: भाई का,
0: 5 तारीख को जिनका
1: पंडवानी
0: देहांत हुआ।
1: गायिका थी, बहुत
0: हाँ,
1: बहुत
0: विश्व
1: यहाँ बहुत
0: प्रसिद्ध
1: पुरानी गायिका थी
0: पंडवानी
1: दीदी, हम
0: जी,
1: लोग बचपन करीब 8-9 साल के तब उनके प्रोग्राम सुनते आता। मैं
0: बिल्कुल।
1: मेरे पास में भी लाउड स्पीकर था पहले, मैं कम से कम 10-15 साल लाउड स्पीकर बजाया घर का था मेरा, पंडवानी बहुत फेमस था दीदी इनका।
0: बिल्कुल, तो पंडवानी को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाली वो शख्सियत थी, लोक की
1: हाँ
0: एक
1: बहुत
0: बुलंद
1: विदेशों भी
0: आवाज
1: गए
0: थी।
1: दीदी वो,

0: अपना प्रेजेंट भी पाई, इनाम भी मिला,
1: जी
0: पदक भी मिला उनको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये लोक नाट्य विधा है पंडवानी, उस पर आपको अवश्य गर्व होगा और अपनी उन कलाकार पर गर्व होगा जो
0: हाँ
1: 5 तारीख
0: दीदी,
1: को हमें छोड़कर चली गई। तो बहुत अच्छा लगा रामस्वरूप गुप्ता जी ने हमें फोन किया और छत्तीसगढ़ का रंग इस कार्यक्रम में बिखेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही वो डोर है जो दूरियों के बावजूद हमारे मन को अपनी जड़ों से बांधे रखती है। शहर बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा शहर पूरी आत्मीयता के साथ हमारे भीतर धड़कता रहता है। आज आपने अपने शब्दों से अपने अपने शहरों और गांवों की जो सुंदर तस्वीर उकेरी, उसमें हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और आत्मीयता के रंग मुस्कुराते रहे। आपके शहर, आपके गांव की ये रंगत आपके मन में हमेशा यूं ही बनी रहे, खिली रहे और आप उससे हमेशा यूं ही जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 12 बजा है और यह समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा।

रविंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। ग्राम अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे लोग इसी गाने को पसंद किया है। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने।

और ये अगले गाने के लिए जो हमारे पास में फरमाइश आई है, इन्होंने बहुत ही पुराना गाना सुनना चाहा है, फिल्म आन का जो 1952 में रिलीज हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभ चंद्र और बिट्टा बजाज सहित इनके परिवार के दूसरे लोग। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है ये घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। और ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत, आन फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

अगला गाने लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इन्होंने फरमाइश की है नई सड़क एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एम एम राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कुरवाई जिला विदिशा से लिखने वाले हैं रियासत खान, सगीर खान, जफर खान, निकलेश सक्सेना और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

ये फिल्म का नाम है। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अम्बलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भोपाल गौतम नगर से लिखने वाले हैं पंडित मनवेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा। और भोपाल कोलार से यहाँ लिखने वाले हैं अक्षिता, अनुष्का शर्मा, नरेश, ममता जैन, हेमा, करुणा और अमन। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं ये राइटिंग कुछ साफ सी नहीं है, तो चलिए हम दूसरा पत्र शामिल कर लेते हैं। करूला मुबारकबाद से लिखने वाले हैं अयूब खान, एरम, गुड़िया, शोएब खान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम खुदा खुदगर्ज।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खुदा कसम फिल्म में मोहम्मद रफी और आयशा भोसले को। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और फरमाइश भेजिए गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा और मीका बिरक, और ये बाकी के जो साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली, इन्होंने इस गाने को पसंद किया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में एक फरमाइश ये भी आई है, गांधी भाका कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने लिखा है यह खत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है

0: खीर बन गई। कोई आवाज नहीं। तीन चार आवाजें दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टहलने। आए देखें, देखा उसने तो ये अपने मरणासन्न पड़े। उसको उठाया, अरे उठिए उठिए। काय को उठे, वो तो समाधिस्त थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते हैं तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और जो बनी बनाई खीर है पंडित तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई, पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंछ के खाई और गंजिया मांझ के धर दी उसने बिल्कुल। और फिर वहां पर आई और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ गए, कहाँ चले गए? मैं इनको कितना प्यार करती थी, कहाँ चले गए मेरे स्वामी, कहाँ चले गए? अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई। का होगा बेटा, काय के लाने रो रही है, का होगा? ये नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही। अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, 55 की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहाँ उठा, अरे राम। दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे का होगो, अरे लड़का नहीं रहो। दद्दा भी बोले, अरे 68 के हम हो गए, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन ही तो खा रहे, अरे राम परमात्मा हमें उठा ले तो एक लड़का काय को उठा लो, अरे भगवान। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए और तभी गुरुजी पीछे से आए। जैसे गुरुजी आए रोना पिटना मचा हुआ। गुरुजी को देखकर लोगों की ढढ़ास बंधी, शांत हुए। गुरुजी से, गुरुजी ने आकर वहां पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। सभी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरुजी ने कहा कि अवश्य कुछ अच्छा होगा, मैं आ गया हूं। सबने कहा गुरुजी ऐसा कुछ करो कि जी हमारा जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और बब्बा जी ने क्या कहा। अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें सुनिए साहब। बहू ने पहले क्या कहा, गुरुजी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन इनको जिंदा कर लो गुरु जी। मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले लो गुरु जी, लेकिन इनको जिंदा कर लो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम हमारे तो दिन कहे भाई, लड़का चलो गो जीवे को का फायदा गुरु जी। अरे राम, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन लड़का को, अरे लड़का को जिंदा कर दो गुरु जी। अरे अम्मा की आत्मा तो मैं मालूम, अरे राम, अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो, लड़का जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकरिया खुद रहन दो, बाबू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेरा है, वैसे भी हमारे दो तीन दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी। अरे राम, अरे ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा, आप लोग ना रोए, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा। एक काम करें, पवित्र गंगा जल आप बुलवाएं, मैं भी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल। गंगा जल रखा, गुरु जी ने गंगा जल अपने कमंडल में लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया।
1: ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यात्या च गायंडकी पूर्ण पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुरिया।

इस बच्ची का कल्याण करो, अवतरित हो मां, आश्रय दो मां, प्राण दो मां। अब साहब उन्होंने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके

0: प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले पिए। तो बेटा बहू तुम तो जान से ज्यादा चाहती थी, तुम पी लो। तो बहू ने कहा नहीं, हो कैसे पीले, पहले तो सबसे पहले पप्पा जी का नाम मारे। हमारा नाम तो वेटिंग में है। बब्बा जी से कहा कि आप पी लो। बब्बा जी कहा अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड कर गया को कान देखे। वो तो बाहर कर दे रोटी पानी कौन दे है। अरे राम हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे, दादी से कहा कि आप पी लो। माता जी आप ग्रहण करें जल, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम अरे अरे हम तो पी रहे थे गुरु जी, लेकिन का बताए अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकड़ा को का है। नहीं तो आपके इनके लिए बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो बेन्यारी हो जाए है, डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा, गुरु जी मैं नहीं पी सकती। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए। गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी और मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी। तो हमने 10,000 की शर्त दी थी थी गुरु जी, लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरु जी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरु जी इनको इनकी हमारे जैसी कई हीरोइन मिल जाएंगी। और वैसे भी गुरु जी मैं भी इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनकी जैसे कई हीरो मिल जाएंगे। इतनी बात गुरु जी ने सुनी तो फौरन पीछे से आवाज आई,
1: कहा गुरु जी।
0: हाँ पुत्र बोलो।
1: तो भाई काय नहीं पियो।
0: गुरु जी ने कहा हाँ पुत्र मैं अवश्य पी लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरु जी ने गटगटा के पानी पिया।
1: कहा गुरु जी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाऊंगा। गुरु जी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरु जी ने कहा नहीं, इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे। ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दू और नहीं तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि। तो उसने कहा गुरु जी अभी 3,500 रुपए दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो ये छत घर घर आ जाएगी, पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले ही गए हैं, अब आप तो फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लट्ठ खूब पिटाई
1: के लगाए। तुम तो बोले थे बहुत चाहते जी जाती
0: नहीं, तो ऐसे क्या अच्छा तुम तुम्हारी तो बहुत उनने तुनाई की। और गुरु जी ने एक ही बात कही,

0: करना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला, भाई क्या बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, और आज आप इसे पीट रहे हो। क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं।

0: विज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो? अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया, पेपर में इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए मैंने विज्ञापन दिया था पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़े देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिए, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, खिसिया के बोला, मेरे ना दोनों दांत भी गायब, मेरे दांत भी गायब।
1: हमारे एक दोस्त है जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला, आओ रजनीकांत जी आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ वहाँ की चर्चाएं हुई। अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पप्पा पप्पा हम बाहर जाएं पप्पा। तो उनके पिताजी ने बोला, क्यों भाई क्यों बाहर जाएं? पप्पा पप्पा हम बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं, बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, चार पांच बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है, 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में। चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता है, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब कहने का डॉक्टर साहब,
1: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब क्या है, क्या हो गया आपको
2: डॉक्टर साहब? मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब,
1: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या इस तरीके से बताइए, आपको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आपको?
2: डॉक्टर साहब बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो चली है, मैं जो भी कहा किया करता हूँ वो सब बिल्कुल तुरंत ही भूल जाया करता हूँ, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब।
1: ओहो यानी याददाश्त कमजोर हो गई है?
2: हाँ डॉक्टर साहब,
1: जो कहते हैं करते हैं भूल जाते हैं,
2: भूल जाते
1: हैं
2: डॉक्टर साहब, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब।
1: हाँ एक मिनट एक बात बताइए, ये बीमारी आपको कब से है
2: डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी?
1: एक पागल खाने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नए डॉक्टर पूरे पागल खाने का मुआयना कर रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।
2: डॉक्टर सुनवा, ये पागल गंगाराम है, ये एक लड़की से प्यार करता था।
1: ओहो
2: बेचारा।
1: ओहो
2: शादी करना चाहता था।
1: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
2: ये गंगाराम नाम का पागल,
1: ये जो पागल है इसका नाम क्या बताया आपने?
2: गंगाराम।
1: अच्छा ये क्या करना चाहता था?
2: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: मगर लड़की ने धोखा दे दिया। और यहाँ पागल हो गया।
1: ओहो, यानी गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
2: पागल।
1: अच्छा चलो आगे चलते हैं।
2: बेचारा
1: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
2: वो वाला?
1: हाँ
2: हाँ। वो तो पागल लटोरे लाल है।
1: अच्छा इसका नाम क्या रखा आपने?
2: नहीं इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
1: ये लटोरे लाल।
2: अच्छा अच्छा,
1: इनको क्या तकलीफ है? कैसे पागल हो गई है?
2: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था।
3: एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में जिसको पकड़ कर लाया जाता है वो आदमी अपना ताबीज बेचकर पेट पालने वाला एक मदारी और जमुरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है। उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में खो जाने को जी चाहता है। लैला तेरे मोती जैसे दांत इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है। लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में खो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में हंसना मना इस धारावाहिक की छठवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/results.aspx पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। कैसी हैं आप? बारिश की बूंदों ने कर दिया ना मन तरोताजा। जरूरी भी है सखियों, मन अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और इन दोनों के साथ ही सखियों, खुद पर भरोसा और अपने दम पर आगे बढ़ने की चाह का होना भी जरूरी है। ये वो गुण है सखियों, जिन पर सफलता की नींव रखी जाती है। गौर फरमाइएगा, खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। आत्मनिर्भरता की धूप में हर मुश्किल पिघल जाती है। सखियों, आत्मनिर्भरता का भाव जीवन में सबसे बड़ा संबल है। जी हाँ, आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज का अभिप्राय है महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे केवल अपने परिवार को ही नहीं सखियों, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की मुख्य धुरी बनती हैं। क्या सोच रही हैं? यही ना कि जीवन में आत्मनिर्भर होना यानी सशक्त होना बहुत जरूरी है। सही सोच रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योजना की। जी हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का यदि आप लाभ लेना चाहती हैं, तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। जी हाँ सखियों, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की गर्भवती महिलाओं और श्रमिक पत्नियों के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सखियों, पहली और दूसरी संतान के समय 16,000 रुपए की राशि दो किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सामान्य प्रसूति के समय 4,000 रुपए और संस्थागत प्रसव के बाद 12,000 रुपए। पात्रता मानदंड की बात करें तो सखियों, महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। महिला या उसके पति का असंगठित कर्मकार मंडल या भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। सखियों, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो, गर्भावस्था का मेडिकल प्रमाण पत्र, डॉक्टर की पर्ची और जन्म के बाद शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या ई उपार्जन एमपी लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा प्यारा भीगा भीगा सा एक गीत।

0: समझा
1: समझा आ ठंडी हवा
0: आहा समझा ऐ काली घटा।
2: गीत हमने सुन लिया सखियों, अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
3: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
4: सचो आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाती हैं, विशेष रूप से स्वयंसेवी के रूप में कार्य करती हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ आशा कार्यकर्ता इंदु बाला चौहान हमारे साथ हैं श्रृंखला मेरी उड़ान में। आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार इंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी धन्यवाद, नमस्कार।
4: इंदु जी, सर्वप्रथम तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, कितने घरों को आप कवर करती हैं?
5: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य कड़ी है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां हैं समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन व संस्थागत प्रसव कराना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और टीकाकरण में भाग लेना, और समुदाय में ORS के पैकेट वगैरह बांटना, आयरन की गोलियां देना, कंडोम बांटना, ये सब जो है आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
4: बहुत ही अच्छी आपने हमें जानकारी दी इंदु जी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में आप कैसे मदद करती हैं?
5: हम आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करती हैं और गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका पंजीयन करवाती हैं, और जो बच्चे हैं जिनको रूटीन टीकाकरण लगना है, जैसे जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण होते हैं, तो इन लोगों का जो है टीकाकरण केंद्र तक लेके जाते हैं हम लोग अपने समुदाय में से, ताकि बच्चों को जो है जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगना, उनका पंजीयन ऑनलाइन आजकल एंट्री हो गई है मैडम, तो वो सब कुछ हम लोग का जो है जिम्मेदारियां है सब।
4: इंदु जी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और अब बात करते हैं समस्याओं की। फील्ड में काम करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बताएं प्लीज।
5: जी हाँ, वैसे तो जो भी काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। वैसे ही हम आशा कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। जैसे सरकार अगर कोई स्वास्थ्य योजना चलाती है तो लोगों को इसके बारे में समझाना, तो ज्यादा लोग शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमको मतलब लोगों को समझाना पड़ता है क्या लाभ है इन सब चीजों के, और ये योजना क्यों चला रही है सरकार, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम आशा कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी ऐसी है जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे तो परिवार की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत सारी आशा बहनें हैं हमारी जिनको परिवार में जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सब समस्याएं जो है बनी रहती हम लोगों के। लेकिन फिर भी हम लोग को मेन उद्देश्य हमारा क्या है, समाज सेवा है आशा कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें बस खुशी मिलती है।
4: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत ही सहज तरीके से अपने मन की बात रखी, और वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रही हैं। यदि हमारी कोई सखी जो आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा?
5: वैसे आशा कार्यकर्ता जब मैं बनी थी तो 12th पास से ही मैंने जो है फॉर्म भरा था, अपने जोन है स्वास्थ्य विभाग का जोन, जैसे अपने इंदौर जिला में 4 मुख्य जोन है, तो जो वार्ड वाइज जो जोन है अपना नंदा नगर जोन लगता हम लोग का, तो वहां जाके मैंने फॉर्म भरा था, और फिर मेरा लगभग 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया था। आपने जैसे अभी पूछा कि अगर कोई बहन अगर हमारी आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है, तो उसके लिए जो है मैंने तो 12th पास से ही मैंने फॉर्म भरा था और मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अब जो है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारी कोई सी भी बहन अगर आशा कार्यकर्ता बनना चाहे तो, और उसका मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड में जाएंगे अपनी बात रखना आना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई बात नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं को हम जो है सही तरीके से लोगों को बता सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें, अपनी बात को उनके मन तक पहुंचा सकें, लोगों को जो है जागरूक कर सकें, ये जज्बा होना चाहिए, तो वो जो है आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कर सकती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि पेमेंट आया तो ही या पेमेंट के लिए ही नौकरी करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के इसमें, तो बस एक सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। और अगर किसी की मदद हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं की वजह से, तो दिल में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ही अनुभव किया हकीकत में, बहुत बार बहुत खुशी मिलती है हकीकत में।
4: क्या बात है, तो आपके चेहरे से हम देख रहे हैं खुशी झलक।
5: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।
4: इंदु जी ये बताइए कि सही समय पर सहयोग प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है, आप संतुष्ट हैं?
5: हाँ जी मैडम, प्रोत्साहन राशि तो मिलती है समय पर, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन आ जाता है पेमेंट, हम लोग खुश हैं।
4: क्या बात है। अब ये बताइए इंदु जी कि एचपीवी टीका प्रदेश की हमारी 14 वर्षीय बेटियों को लगाने का आग्रह किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप हमारी सखियों को जानकारी दें।
5: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी जो है सरकार ने एचपीवी का टीका निकाला है जो कि 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को लगना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, तो उससे जो है बचाव के लिए ये टीका है। तो मैं एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने घरों में जो भी 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनको ये टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क है टीका, और बालिका का जो है आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं।
4: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका है?
5: एक आशा कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जो समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। और आशा कार्यकर्ता पहले ये लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करती है, जो सामाजिक सेवा और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग जो है आशा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देती हैं।
4: इंदु जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमारी सखियों को निश्चित रूप से हमारी बातचीत से लाभ पहुंचा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी आप अपनी फरमाइश का अगर गीत बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
5: हाँ जी, बालिकाओं की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी रोजा फिल्म से गाना है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सुना दे दीजिए।

तो जो रूप लावण्य में बातें हो रही हैं खुशबू की, जी हाँ इत्र की, परफ्यूम की, जो आपके रूप लावण्य को अनुपम बनाता है। सखियों, इत्र या परफ्यूम का सही इस्तेमाल हमारे व्यक्तित्व और सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। सखियों, सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए इत्र का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इत्र हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाना चाहिए जहाँ रक्त का प्रवाह त्वचा के करीब होता है और थोड़ी गर्माहट रहती है। गर्माहट से सखियों खुशबू प्राकृतिक तरीके से फैलती है। कलाई, गर्दन और कॉलर बोन के साथ कानों के पीछे इत्र जरूर लगाएं। इत्र या परफ्यूम लगाने के बाद उसे कभी भी हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सखियों खुशबू के प्राकृतिक तत्व टूट जाते हैं और उसकी महक बदल जाती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें सखियों कि इत्र त्वचा पर धीरे धीरे स्प्रे करें या थपथपाकर छोड़ दें। अपनी सुंदरता और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इत्र लगाने से पहले त्वचा पर कोई अनसेंटेड बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे इत्र या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। सखियों, इत्र और परफ्यूम का चयन हमेशा मौसम के अनुसार करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो महफिल में आपकी तारीफ में वाह वाह होगी। और चलिए अब गीत सुनकर भी आप वाह वाह कह उठेंगी।

क्यों बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो झटपट चीज कॉर्न चाट तैयार कर सकती हैं। ये स्वाद में लाजवाब, पौष्टिक और बनाने में आसान होती है। तो बस झटपट सामग्री नोट कर लें। स्वीट कॉर्न 1 कप उबले हुए, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और मक्खन सखियो 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मसाले स्वादानुसार, नमक आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चीज कद्दूकस किया हुआ स्वादानुसार और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और बनाने की विधि तो बहुत आसान है सखियो। जी हाँ, एक पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें उबले हुए कॉर्न डालें और 2-3 मिनट तक भुने। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी हमने काट कर रखा था मिला दें और इसमें अब लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें और इसे एक सुंदर बाउल में निकालें और ऊपर से कद्दूकस की हुई चीज और हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसे और सबका दिल जीत लें। और चलिए अब हम आपका दिल जीतते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब कर लेते हैं काम की कुछ बातें। बारिश के मौसम में बिजली के उपकरणों और तारों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हां सखियों, बिजली चमकने पर या भारी बारिश के दौरान टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज जैसे कीमती उपकरणों को मेन प्लग से निकाल दें। सीधे मेन लाइन से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी न करें। गीले हाथों या नमी वाले हाथों से कभी भी स्विच, सॉकेट या किसी भी उपकरण को न छुएं। जमीन पर या पानी की संभावना वाली जगहों पर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बिल्कुल न करें। अपने घर की अर्थिंग और MCB की जांच किसी प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से जरूर करवाएं ताकि करंट का खतरा न रहे। साथ ही सखियों, भारी बिजली के झटकों और वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों को बचाने के लिए घर में सर्ज प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बारिश के मौसम में आप सुरक्षित रहेंगे। अरे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलिए आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दें अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
2: प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें आज आप सुनेंगे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में ये निमाणी लोक रचना।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।

0: हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 स्टूडेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, बिदसा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और

0: पश्चिम मानसून अगले तीन दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29

0: आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, हर जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार, आशा भोसले की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है एसडी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं, और ये साथी सुनना चाहते हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

ये अगली पसंद जो भेजी है हमारे ये साथी हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जासमीन प्रयागराज भट्ट, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा स्वाति माखीजा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मुकेश की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है असली नकली इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरख, जैतेंग बिरख, मीका बिरख। इन साथियों ने सुनना चाहा है तीन देवियाँ, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है मजरू, संगीत है एसडी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीने की राह इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

अगला गीत है लिया है हमने फिल्म आराधना से, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नी नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे और रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

0: ये था कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है।

मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंगहम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब आपको बता दें, आज शाम की सभा में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। शाम 5:33, 6:55, रात 8:15 और रात 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग रजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों द्वारा राग मधु कौंस में शहनाई वादन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से।

ये थी जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया में वे 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 में है हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

के कुल 750 पोस्ट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 7 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 20 जुलाई। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप आईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त और आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि कुल पोस्ट है 750 आईओबी अप्रेंटिस के लिए, अंतिम तिथि है 20 जुलाई और आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iob.bank.in। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

जावेद बशीर श्रेया घोषाल की आवाज में सुनाई गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 5 मिनट में आप एक नई स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? आज की तेज रफ्तार दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें और घंटों की क्लास ही सीखने का एकमात्र तरीका नहीं रह गई है। अब जमाना है माइक्रो लर्निंग का। माइक्रो लर्निंग का अर्थ है किसी विषय को एक साथ लंबे समय तक पढ़ने की बजाय उसे छोटे छोटे भागों में और कम समय में सीखना। उदाहरण के लिए, रोज केवल 10 से 15 मिनट देकर अपने विषय का एक नया टॉपिक सीखना, किसी सॉफ्टवेयर का एक फीचर समझना या किसी विषय का एक छोटा वीडियो देखकर नई जानकारी प्राप्त करना। इससे सीखना आसान भी हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। और यही जो आपने सीखा है उसे आपकी जरूरत, आपकी रुचि और आपके करियर के हिसाब से तैयार किया जाए तो उसे कहते हैं स्किल कस्टमाइजेशन। यानी हर व्यक्ति के लिए सीखने का अपना अलग रास्ता। यदि कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है तो उसे लेखन, संवाद और कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल स्किल सीखने चाहिए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल तकनीक की मदद से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी गति से और अपनी रुचि के विषय चुनकर सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इसलिए आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि सही समय पर सही स्किल सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो लर्निंग हमें कम समय में प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर देती है, जबकि स्किल कस्टमाइजेशन हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है। यही शिक्षा और रोजगार की दुनिया में एक नया बदलाव ला रहे हैं और हमें बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ बातें माइक्रो लर्निंग और स्किल कस्टमाइजेशन पर। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में सुने गीत फिल्म मैं हूं ना से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
4: डीडी डायरेक्ट,
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:33 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

पहला गीत हमने लिया है कोयला फिल्म से। आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की, इंदिवर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में अब सुनिए बाजीगर फिल्म का ये नगमा। जफर गोरखपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है राजा फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम शेफर्ण का।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 होने को हैं। नीचे सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ली गोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज TT नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1

0: at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम में हम भारत और इंडोनेशिया के संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का विश्लेषण करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वर्ष 2018 में अपनी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। वर्ष 2018 के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय इंडोनेशिया यात्रा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत

0: वर्षों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों में निहित हैं। हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से भारतीय व्यापारी, विद्वान तथा बौद्ध और हिंदू धर्म के प्रचारक इंडोनेशिया पहुँचे। भारतीय सभ्यता का प्रभाव आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य आज भी वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिन्नेका तुंगल इका अर्थात अनेकता में एकता भी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का भी दृढ़ता पूर्वक समर्थन किया। वर्ष 1949 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और बाद में दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के रूप में स्वतंत्र तथा संतुलित विदेश नीति के समर्थक बने। श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया के संबंध समय के साथ और अधिक व्यापक हुए हैं, लेकिन आखिर दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी किन किन क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है और ये भारत की विदेश नीति में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, आइए विस्तार से समझते हैं।
1: वर्ष 2018 में भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति मिली। दोनों देश एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। रक्षा और समुद्री सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार बन चुका है। नियमित रक्षा वार्ताओं, संयुक्त सैन्य अभ्यासों, महासागर विजन तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से दोनों देश अपने सामरिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश के बीच व्यापार, निवेश, विनिर्माण, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंध आज आधुनिक रणनीतिक सहयोग की मजबूत नींव बन चुके हैं।
0: श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अनेक समझौतों और संस्थागत पहलों के माध्यम से भी मजबूती मिली है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए भारत इंडोनेशिया संबंधों पर पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल ने बताया,
2: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। अभी भी अगर हमारे पर्यटक बाली जाते हैं तो पूरा द्वीप हिंदू है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा।
0: भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं, आइए जानते हैं इन प्रमुख पहलों के बारे में।
3: व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ और इंडोनेशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच सहयोग को मजबूत किया। इससे उद्योग जगत और निजी निवेश के बीच संपर्क को नई गति मिली। सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में ताजमहल और इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर के बीच विश्व धरोहर ट्विनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं बाली और उत्तराखंड के बीच सिस्टर प्रोविंस पहल ने दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
4: आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
3: वर्तमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा ने भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और व्यापक आयाम प्रदान किए। जाकार्ता स्थित इस्ताना मेरिडिका में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने व्यापार, मानव संसाधन विकास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा उभरती प्रौद्योगिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों उल्लेखनीय गति तथा गहराई आई है।
4: मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बीते वर्षों में

0: भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। इनमें खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी, कृषि, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, दूरसंचार, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, रेयर अर्थ मैग्नेट विकास तथा ब्रह्मोस एवं वायु से वायु मिसाइल सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े समझौते प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्चर पर आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क के शुभारंभ, योग्यकार्ता के प्रम्बानंद मंदिर के संरक्षण, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु के परिसर की स्थापना तथा गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी।
2: श्रोताओं, भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता सहयोग है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार, समुद्री संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए समझते हैं।
3: भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडोनेशिया की क्षेत्रीय भूमिका एक दूसरे की पूरक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर स्थित इंडोनेशिया भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क रणनीति का महत्वपूर्ण भागीदार है।
2: श्रोताओं, बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंध आज आधुनिक आर्थिक, सामरिक और तकनीकी सहयोग का आधार बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में ये साझेदारी केवल दोनों देशों के विकास में ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक शान्ति स्थिरतायै भारत इण्डोनेशिया देशयोर रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम्। जकार्तायाम् इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान्। भारत इण्डोनेशिया देशयोर्मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख सन्धिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिन्तङ्ग् आदिपूर्ण इत्युपाधिना समलङ्कृतः। केरलराज्यस्य वायनाड् जनपदे एकस्मिन् सुरंग मार्ग निर्माण स्थले सञ्जातेन दारुण पंकपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्व सूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात हरियाणा

0: पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीये तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक संधेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचार विनिमयं अकारि। द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। उभाभ्याम नेतृभ्याम जकार्ता नगरे भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता। संभाषणावधौ उभाभ्याम भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक संधि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता। जकार्तायां राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इंडोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्धशतकोटि जनेभ्यः समर्पितः।
1: सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: इतः प्राग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायाम इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माण स्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यन्तं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्यारक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां सम्बोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप प्रेसिडेंट कप शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां हरितक्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारम्भं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्री शाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणस्य पर्यावरणतन्त्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यंत्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टिः उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिनः 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्यप्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्नाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंघम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पञ्च स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।

अगला गीत श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है बेशरम, निखत खान का गीत और ललित पंडित का संगीत।

आतिफ की आवाज में अब सुनिए जहर फिल्म का ये नगमा। सईद कादरी के लिखे गीत की धुन बनाई है रूप कुमार राठौर ने।

चित्रा और हरिहरन की आवाजों में कार्यक्रम का अंतिम नगमा चरस फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है राजू सिंह ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन।

0: समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 और 10 बजे। 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशा, जो होगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन, राग होगा मधुकौंस। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 10:30 बजे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम और आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती। और अब हम आपको जानकारी देते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक हंसना मनाहे की 7वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 1:45 बजे सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे कल शाम 5:33 पर 6:30 बजे और रात 8:15 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:00 बजे।

कल रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, हम आपको कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। 10 बजे सुनिएगा मुरलीधर बलवानी का लिखा नाटक बंटवारा, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा हमीर। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30। कल सुबह 9:15 सुनिएगा सुगम संगीत में अवधेश प्रसाद त्रिपाठी के गाए गीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 9:30। 10:00 प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे मालविका कानन का ख्याल गायन, राग होगा देसी। और श्रोताओं, कल शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे डॉक्टर देवीदास पटेल से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुवाई विधियां। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्य योजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। मैं सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे जहाँ हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत

पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जन सुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचे हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सगे भैया बहनन खां रूबी बहन की राम राम। देखो भैया बहनों, जो मौसम चल रहा है बरसात को, और जा समय अपन के लाने जो चाहिए कि अपन जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। और भैया जब अपन स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे तभी भैया अपन जो है स्वस्थ रह सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। तो भैया हम तो जो ये उम्मीद कराते हैं कि हमारे सगे भैया स्वस्थ हुए, सुरक्षित हुए और खुशहाल हुए। और भैया देखो, जय आशा के संगे शुरुआत करते हैं आज के अपने कार्यक्रम की। तो भैया देखो, जो शिक्षा है वो अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लाने बहुत ही ज़रूरी है। भैया देखो, कोनू भी देश की सुशिक्षित आबादी जो है ज्ञान और कौशल के भंडार से पूर्ण होते तो वो भैया न केवल देश को आर्थिक विकास के लाने जरूरी है, बल्कि भैया आप जो सगा पूर्व जने की चहुमुखी जो विकास है बाके लाने बहुत ही जरूरी है। जय के लाने भैया अपन को क्या करना चाहिए कि सभी को जो है शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। और भैया देखो, अगर अपन बात करें अपने मोड़ा मोड़न की, तो भैया बिनको स्कूल भेजना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि वे पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन सकें। और भैया देखो, संस्कार तो अपन घर से देते ही हैं, तो भैया अच्छे संस्कार के संगे वो जो है स्कूली शिक्षा भी प्राप्त करें, जो भी बहुत ही ज़रूरी है। पर भैया पहले कहा होता तो कि मोड़ा मोड़न को माता पिता जो है स्कूल नहीं भेजा थे, वो जो बहानो लगाते थे कि पैसा नहीं है, ते किताब उनका खर्चा कौन उठाओगे, जे सब इस तरह की बातें होती थी। पर भैया देखो, वर्ष 2001 से

0: एक अभियान चला होगा जो सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ मैं कहा है कि भैया जो 6 से 14 बरस तक के बच्चा हैं बिनके लाने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रावधान है। भैया जी में कहा है बच्चन के लाने किताबें तो फ्री में मिलता ही हैं, संगे ही भैया देखो जो पढ़ावे लिखावे की बिन के लाने को अपन के लाने कोनो फीस भी जमा नहीं करनी पड़त है। संगे ही भैया जो स्कूल से जो स्कूल में कपड़ा पहने जाते हैं जो ड्रेस होते हैं स्कूल की वो भी बिन के लाने फ्री में ही मिलत है, यानी कि सरकार द्वारा मिलत है। वो तो भैया देखो हमें क्या करना है कि सिर्फ अपने बच्चन को स्कूल भेजना है। भैया जय जो सर्व शिक्षा अभियान है जाको उपदेश जाइए सब पढ़ें सब बढ़ें। और भैया देखो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लाने स्कूल में बेहतर सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चन के लाने स्कूल छोड़वे की जो बच्चे का बीच में स्कूल छोड़ देते हैं बाद दर को कम करवे के लाने भैया जो अभियान चलाओ जा रहा हो है। और भैया संगे ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पे जो है स्कूल खोलना ताकि सभी क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाई जा सके। भैया शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनावो और स्कूलन में नई कक्षाएं, शौचालय आवश्यक सामान पीवे के लाने पानी साफ सुथरो जल और उपलब्ध कराना है। और भैया देखो बच्चन को जैसे कि हमने बताओ कि निःशुल्क पुस्तकें और गणवेश देनो है, ये यही सब उद्देश्य के लाने जो है जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। संगे भैया जो स्कूल हैं जो स्कूल खुले गए हैं बिन में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या भी बढ़ानो, शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती करनो। और भैया जो बालिका शिक्षा है कहे से कि पहले गांव में स्कूल नहीं होता थे तो वो मुड़ियन को पढ़ाओ नहीं जाता तो भैया देखो बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देना जा अभियान को उद्देश्य है। जैसे कहा है कि भैया देखो अपने बच्चा पढ़े लिखे होंगे तो भैया समाज में अपन नाम रोशन करेंगे और भैया समाज को विकास होगो, समाज को विकास होगो तो अपने राष्ट्र को विकास होगो। तो भैया हम आपसे जो ही कहेंगे कि अपने बच्चन को जो है विद्यालय जरूर भेजें। और भैया देखो अपन को समय पे स्कूल भेजने हैं बच्चन के लाने जैसे कि भैया वे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। और भैया अब इतनी जो चर्चा को देते हैं विराम और सुनाते हैं जो संदेश।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: और भैया अंतराल के बाद एक बार फिर से सगाई भैया बहनन को स्वागत है कार्यक्रम चौपाल में। और भैया अब अपन बात कराते हैं अपनी पंचायतों की। तो देखो भैया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होते बाको मजबूत करवे के लाने, गांव में किसानों को स्वावलंबी बनावे के लाने जो है पंचायतों की पंचायतें बनाई जाते हैं। और भैया इनके विकास के लाने पंचायतों की अहम भूमिका होत है। तो भैया जो पंचायतें होत हैं बिन के में जो काम होते हैं वे जो है अच्छे से हों, बिन में जो है पारदर्शिता हो, जिन सभी बातन को लेके हम सभी को जो कर्तव्य है यानी कि भैया देखो जो सरकार द्वारा नियुक्त उस पंचायत में व्यक्ति रहते हैं बिन को तो काम है ही, संगे ही भैया हमाओ सबको भी जो कर्तव्य है जो उत्तरदायित्व बनत है कि हम भी जो है अपनी पंचायतों के जो काम है बिन में सहयोग करें। और भैया जो है अपनी जो पंचायतें हैं बिनको समृद्ध बनाएं। और भैया देखो जब कोनो भी चीज़ होए, कोनो भी जगह हो या स्थान हो या कोनो भी काम हो तभी अच्छे से होते जब के बामे सभी को सहयोग होते है। तो भैया देखो अपनी पंचायत हैं और अपनी पंचायत में जो भी काम होंगे तो वह अपने लाने होंगे। और भैया जब पंचायतें अच्छी समृद्ध होंगी तो अपा गांव भी समृद्ध होगो। और भैया जब गांव समृद्ध होगो तो गांव में रहने वाले जो भी सभी लोग हैं वे भी जो है समृद्ध होंगे। तो भैया देखो आज ये तो अपन सभी जानते हैं कि अपा भारत देश गांव में बसा है। तो भैया जब गांव समृद्ध होंगे तो अपा देश समृद्ध होगा और अपा देश को भी विकास होगा। तो भैया हम आपसे जो ही कहेंगे कि अपाए जो पंचायतें हैं उनके जो काम होते हैं जैसे कि सड़कन को निर्माण, बिजली की व्यवस्थाएं करना, तो जामे कहा है कि जे सरकार को तो है ही काम, पर भैया अपन को भी बाको सहयोग करना है और अपाई पंचायतन को जो है समृद्ध बनाना है। और भैया जैसे कि अब नालियां बना दें तो भैया बिन नालियन को जो है अपन साफ करवे को काम अपाओ है, अपन जो है अपाए दरवाजे के सामने की जो भी नालियां हैं सड़कें हैं बिनको साफ सुथरो रखें, बिने गंदो ना करें। नहीं तो क्या होते कि लोग नालियन में कचरा डाल देते हैं और भैया जब कचरा डल जाते हैं तो भैया वे जो है नालियां जाम हो जाते हैं, पानी रुक जाते हैं, फिर पानी जो है सड़कन पर फैलाते हैं। तो भैया देखो सरकार अपनी तरफ से काम करत है, पंचायतें अपनी ओर से काम करत हैं, अपन को क्या चाहिए कि भैया अपन उनको जैसी हैं वैसे अपन को अच्छे से रखनो है। अब जैसे सड़क बन गई तो सड़क की साफ़ सफाई में अपन जो है सड़क पे कचरा ना फेंकें। आजकल भैया कहे देखो कचड़े ही गाड़ी आते हैं तो वहाँ में डालें कचरा, या जो एक नियत स्थान होते वहाँ पे डालें। और संगे भैया देखो अपनी जो नालियाँ हैं बिन में भी कचरा ना डालें, तो भैया जिस साफ़ सफाई बनी रहेगी और दे अपने गाँव है जो वो जो है स्वच्छ रहेगा। और भैया हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने गांव को अपने पंचायतों को स्वच्छ रखेंगे, समृद्ध रखेंगे। और भैया जय के संगे हो चलो है चौपाल से चलवे को टाइम, तो आप रूबी बहन को देव आज्ञा। राम राम, जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे वाले सगे भैया बहन खां मंगलू भैया की और
4: रूबी बहन की राम राम।
5: और किसान भैया देखो, अपन देख रहे कि इस समय जो है अपन खरीफ फसल को समय शुरू हाँ। कर रहा है, और खरीफ फसल में अपन देख रहे हैं कि भाई किसान भैया ने जो है खेतन की बढ़िया जुताई कर ली है और बीज इकट्ठा करके धर लो है, खाद भी रखो है, बस उन्हें इंतजार है केवल पानी को है ना, कि जल भर पानी भर जाए, उसके बाद अपन जो है अपने खेतन में बोनी करें। लेकिन अपने किसान भैया देखो, हम बता रहे हैं कि तो जो है अवे जैसा देख रहे हैं कि अच्छी बारिश हो रही है,
4: अच्छी हो रही है, कहता हूं।
5: हाँ। अगर हो सके आपके क्षेत्र में कम बारिश हो रही हो तो जब बारिश को पूरा फायदा लेके अपन जो है बोनी कर सकते
4: हैं। सही कह रहे भैया।
5: लेकिन अब जाए कि अपन जो भी फसल कर रहे हैं खरीफ की, उसमें अपने कुछ बातों को ध्यान रखने हैं। एक तो जाके अपने लाना पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करना है, है ना, प्राकृतिक के अपन चाहिए कि अपन जो गोबर की खाद को उपयोग करें,
4: बर्मी कंपोस्ट है,
5: और भाई नीम को तेल है, नीम की खली है, जी सबको जो है भाई लाना है उपयोग करने हैं।
4: अब देखो भैया, इनके पास गोबर तो होता ही है, काय से के खेती कराते हैं तो पशु भी रखाते हैं तो गोबर तो होता ही है, तो अपा जो भैया बहन है बिन्ने जो है गोबर की खाद तैयार कर ली होगी पहले से, और भैया खेत डाल भी रही होगी। हाँ।

0: पानी बरस गया, उसके बाद उन्हें बढ़िया जुताई कर ली, खेत में भी अच्छी मिल गई, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि अपन जो है बाकी जैसे रोग कीट लगाते हैं तो रोग कीट के लाने अपन पहले से नियंत्रण कर,
1: पहले से ही तैयारी कर लें, बाकी भी
0: तेल रख लें, खली है ये सब चीज पहले,
1: करंज के पत्ता है, बेसरम के पत्ता है,
0: ये सब चीज अपन जो है पहले से रखें,
1: जैसे ये भैया आपको कहने को मतलब जो है कि जैसे कि अपन ना खाद डालना है प्राकृतिक, बर्मी बर्मी का खाद डालना है, ऐसे ही कीटनाशकों को भी जो है प्राकृतिक रूप से ही
0: उपयोग, हाँ अपन किसान भैया जैसे अब पानी खुले वो जोत आएगी, उसके बाद जब अपन बोनी करेंगे तो बोनी कर समय में किसान भैया ने कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ जाए कि जैसे सबसे पहले है कि अपन बीज अच्छो रहे,
1: बीज अच्छो रहे,
0: बीज की अंकुरण परीक्षण क्षमता अपन जांच पर रख लें,
1: उपचारित कर लें बीज को,
0: बीज को उपचार कर लें, और दूसरी बात जो है कि अपन सीड ड्रिल से जो है बोनी करें,
1: हाँ जैसे कहो होते कि घनी नहीं होते,
0: हाँ नहीं तो कहो कर चुके किसान भैया ऐसे हैं कि छटक में विधि से कर देते हैं, ऊपर से ट्रैक्टर चला देते हैं तो बाद से कहा है कि कहूँ घनी हो जाते हैं,
1: कहूँ बेगरी हो जाते हैं,
0: जिसे कहा है कि अपनी फसल को उत्पादन जो है कम हो
1: प्रभावित होते हैं, और ये जैसे सीड ड्रिल से करेंगे तो एक सी अपने पौधे लगते हैं,
0: गहराई बराबर रहते हैं, लाइन से लाइन की दूरी बराबर रहते हैं, पौध से पौध की दूरी बराबर रहते हैं, तो ये सब फायदा हमें मिल जाए, बीज जो है एक सीमित मात्रा में लगाता है, जितने का पाई खेत
1: जरूरत होते
0: हैं, हाँ और करने हैं, और अपन जो फसल कर रहे हैं ना खरीफ की उसको भी ध्यान रखें, जैसे अपने मिलेट्स
1: मोटे अनाज
0: की जो है उसमें अपन जो है ये निश्चित कर लेंगे, ये खेत में तो कम से कम वो मोटे अनाज की बोनी
1: करने हैं,
0: मक्का है, ज्वार है,
1: बाजरा है,
0: है ना, इन सबको जो है अपन बोनी करें, तो जैसे कहो को मोटे अनाज की फसल कर भी थे कि अपने लाने जो है एक तो ये की पैदावार अच्छी होगी तो
1: भाव भी अच्छा, भाव अच्छा मिलेगा, और दूसरी बात भैया कहा है कि जैसे अपन खरीफ में दूसरी फसलें करते हैं तो वहाँ में जो है लागत लगाते हैं, और जो अपन मोटे अनाज ही करते हैं जहाँ में लागत नहीं लगाते,
0: हाँ लागत कम लगाते हैं,
1: हाँ
0: और बाकी जो है भाव अच्छा मिला,
1: भाव अच्छा मिला थे,
0: स्वास्थ्य के लाना जो है ये मिलेट जो है लाभकारी
1: लाभकारी होते है, और संगे ही भैया जो कोनो भी तरह की भूमि पे हो जाते है और जहाँ में सिंचाई की भी इतनी जरूरत नहीं होती, हाँ
0: तो वहाँ में कहा है कि ये सब काम को कोई किसान भैया को करना चाहिए, वैसे खेती करने है जी में पूंजी कम लगे है ना,
1: हाँ।
0: और अपन उत्पादन ज्यादा हो, क्योंकि मतलब जो है कि अपने जो है फायदे वाली खेती करने
1: है, फायदे वाली खेती करना है, जैसे कि अपन को जो है जैसे अगर एक फसल में कोनो तरह से नुकसान हो जाते तो अपन जिन मोटे अनाज की खेती से बाकी भरपाई कर सकते हैं, कैसे कि जाना
0: बहुत अच्छी बताई आपने कि जैसे अपन खेती करें ना,
1: हाँ
0: कम से कम चार पाँच प्रकार की खेती अपन फसल में खेत में बोनी करें, मक्का भी कर दें, ज्वार भी कर दें, बाजरा भी कर दें, है ना,
1: मूंग उड़ा दे, दलहनी,
0: तो जिनमें कहो के जैसे एक फसल खराब हो गई कजू का,
1: हाँ
0: तो बाकी फसल अपन यहाँ पैदा
1: दूसरी फसल से अपन के लाने भरपाई हो जाते हैं,
0: और अपन ने मान के चलो पूरे में सोयाबीन कर दो या पूरे मक्का कर दे, खराब हो गई
1: वो, खराब हो गई
0: तो किसान को जो है
1: नुकसान हो जाते, हाँ तो अलग अलग रकबा के हिसाब से अपन जो है अलग अलग प्रकार की फसलें करना चाहिए, अपने जो खेती के संसाधन है वह हिसाब से, जैसे अगर कोई उनके पास पानी है तो वो मूंगफली भी कर सकते हैं, है ना, जो उनके पास पानी नहीं है तो वो दूसरी फसलें कर सकते हैं, ज्वार कर सकते हैं, मतलब मोटे अनाज वाली फसलें कर सकते हैं, और मंगरू भैया देखो आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन आप कार्यक्रम को एक विशेष क्रम होते है जो किसान मणि गांव में जी में का होते है कि अपन जो है गांव में जाके वहां पे जो है रिकॉर्डिंग कराते हैं और बायस्थल रिकॉर्डिंग को अपन जो है अपन कार्यक्रम में सुन पाते हैं भैया के लाने, तो वही क्रम में भैया आज अपन लेकर आए हैं ग्राम बूढ़ी बरोद विकास खंड जिला शिवपुरी और जी में भैया बातचीत कर रहे हैं मोहन सिंह यादव और भैया जी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विनोद कुमार त्रिपाठी।
2: तो भैया आज अपन आ गए हैं जिला शिवपुरी विकास खंड शिवपुरी के गांव बूढ़ी बरोद में और बूढ़ी बरोद में भाई बिलात किसान भैया बैठे हैं, इनसे अपन तनक देर से बताएंगे, तो सगे किसान भैया से कहते हैं राम राम
3: राम राम राम राम राम।
2: सो भैया देखो आज अपने पास जो बैठे हुए हैं किसान भैया तो इनसे अपन बात कर रहे थे, तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
4: ज्वाला प्रसाद जाटव।
2: ज्वाला जी भाई उम्र कितनी हो गई?
4: हो गई 50 के लगभग।
2: 50 साल अपनी उम्र हो गई और जपन तनक पढ़े लिखे हैं?
4: हाँ रहेंगे थोड़े बहुत पढ़े हैं।
2: खेती की जमीन अपने पास कितने है?
4: नहीं है, 4 बीघा है
2: अपने पास, 4 बीघा जमीन है ना। तो आप जो बताओ जैसे अपन 50 साल पहले जो अपन खेती होती अपने यहाँ और आज जो खेती हो रही है जहाँ में का परिवर्तन अपने यहाँ लाना देख मिले, मतलब पहले अपन जीते खेती कैसे होती?
4: खेती पानी पहले खाद मार डालते, गोबर के मान पशु रखते उनके गोबर डालते, फिर जुताई करते, हर बेल से करते, हर बेल फिर बोन

0: रखते हाँक देते दो दो बेर बकर भी देते, बकर के अलावा दुबा मच जाए जो गोंदरा की गांठा माठा ही मर जाए तो सब करत ट्रैक्टर चला लगे सो पशुपालन मतलब कम कर लगे सो बैल लबला कर नहीं है ट्रैक्टर करवा लाए थोड़ी बहुत हो गई मर जाए घास जैसे तैसे होते हैं।
1: तो पहले जब अपन जो खेती कराते वहाँ में कौन कौन सी फसलन की खेती होती?
0: पहले तो मक्का बोते मक्का है, कोदे हैं, कुटकी है, कौनी है और समा है, फिकार है, जे बहुते वो खूब खाते खूब दम से सुकून, ना कोई बीमारी रहती ना कछु रहते ना खात्मत कछु ना करते।
1: अच्छा अपन अब बात करें भाई आज की खेती की, तो आज की खेती कैसी हो गई है?
0: वो गाना माना थोड़ी बहुत गोड़ा गाड़ी करी निंदाई मंदाई कराते थोड़ी बहुत।
1: नहीं जैसे पहले खेती की अपन जुताई कराते तो हर बैल से कराते, आज अपन खेत की जुताई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं?
0: ट्रैक्टर से कर रहे हैं।
1: ट्रैक्टर से कर रहे हैं। पहले अपन जो है सिंचाई के साधन अपने पास कहाँ होते जमीन में?
0: रेंट चलते माने लोएटा रेंट चलते उनसे कर लेते
1: सिंचाई कराते, तो पहले जो है सिंचाई करवे में बिलास समय लगा तो
0: अब ऐसे के फिर
1: और आज अपन अगर सिंचाई की बात करें तो आज सिंचाई के साधन कहाँ कहाँ हो गए हैं?
0: आज सिंचाई के पहले पंप चले, पंप के अलावा फिर मोटरें चल गई हैं, सो मोटरें सिंचाई कर रहे हैं।
1: और जहाँ मतलब पहले समय खेती में ज़्यादा लगत तो कि आपकी खेती में ज़्यादा समय लग रहा है?
0: पहले समय ज़्यादा लगत तो अब ऐसे के कम लगाते जल्दी हो जाते हैं, ट्रैक्टर से भी जल्दी कर लेते हैं और सिंचाई भी अपने जल्दी कर लेते हैं।
1: तो कभी को मतलब जो है कि अपने पहले की खेती अच्छी होती कि अब की खेती अच्छी मान रहे अपन?
0: पहले खेती अच्छी होती है, अब एक तो वो ठीक ठाक है, बोलिए अपन चल रहा हो जैसी चल रही है, मतलब खेती पहली से थोड़ी लग रही है अब खेती, ना कछु बीमारी होती है ना कछु हो तो चाहे खा लेती है अपन बढ़िया सुसंत कहो भाजी टूर खाए लटा मगुआ है मतलब सब खा लेती है ऐसे कछु ने मगुआ भूज लो।
1: पहले अपन बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपन स्वास्थ्य पहले आदमी को ठीक है तो आज बेला तरह की बीमारी हो गई है, पैदावार बढ़ गई है ना,
0: हाँ हो गई।
1: आपको कहने का मतलब जो है कि रासायनिक खाद उर्वरक का उपयोग ज्यादा हो रहा है जिसके कारण बीमारी हो रही है, पैदावार जरूर हो रही है, लेकिन पहले की खेती को आप बहुत अच्छी मानते हैं?
0: हाँ हाँ मानते ही मान रहे और भाई पहली खेती करें अच्छी मान रहे।
1: देखो आपने जो है भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, कराने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पास चलते हैं तो जानते हैं इनसे नाम, तो भैया आप अपना नाम बताओ।
2: रामदयाल।
1: रामदयाल जी भाई उम्र कितने हो गई?
2: 60 साल की हो गई।
1: 60 साल की हमारे उम्र हो गई है, तो अपन जो है 60 साल की खेती में और आज की खेती में का अंतर है जी आप बताओ?
2: अंतर जो ये मैं बताऊँ आपको, पहले खेती थोड़ी बड़ी होती, छोटी मोटी खेती कर लेते, अब जो है तुम्हारी जो जो है ट्रैक्टर से और मोटर पंप चल गए तो खेती बढ़ गई है, लगत हो गई है गाय की खाद की सरकारी की, सुबह से मतलब पैसे तो ज़्यादा हो जाते
1: अपन जई गांव में अपन जन्म भाव हो है ना। तो अपन अगर बात करें सुविधा की दृष्टि से तो अपने गांव में पहले जो है अगर अपन बात करें आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले तो अपने गांव में कौन कौन सी सुविधाएं थी?
2: अपने गांव में सुविधाएं तो मैं बताऊँ कुछ नहीं थी, न कोई ट्रैक्टर थे और रेंट से खेती करते और मोटर पंप पे कुछ ना आते, रेंट को कोई साधन ना आते, मतलब आपको बहुत साधन हो गए तो जैसे खेती जल्दी कर लेते हैं, फसलें कम ज़्यादा होने लगी हैं।
1: अब जैसे भाई गांव की अपन विकास की बात करें तो पहले गांव में अपने बिजली हती?
2: नहीं हती बिजली नहीं हती।
1: तो पहले अपन अपने जीवन अपन कैसे करते?
2: मट्टी को तेल ले आते, बाहर चिमजी जलाते, लांडे जलाते हैं, परेशान रहते।
1: और अगर अपन बात करें सड़कन की अपने?
2: सड़कें कोई सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें थी, दुख बीमारी हो गई तो बेल ही गाड़ी से ले जा रहे वहाँ तक पहुँच पाए जब तक चाहे मरीज बचे और ना बचे, अब तो ऐसा है।
1: और शिक्षा की अपन बात करें, मोड़ा मोड़ी की पढ़ावे लिखावे के लाने पहले पे गांव में का है स्कूल आते?
2: हाँ स्कूल, हाँ छोटे मोटे आते स्कूल पढ़ाते।
1: आज अपने गांव में आंगनबाड़ी
2: है, सहायिका है
1: और सड़कें
2: पक्की बन गई
1: और बिजली की व्यवस्था
2: पूरी है।
1: तो कहने का मतलब जो है कि पहले से जो है आज की तारीख में अपने गांव में विकास हुआ है,
2: बहुत बदलाव हुआ।
1: रामजाल जी अपने पास जो है खेती की जमीन की बात करें तो अपने पास खेती की जमीन कितनी है?
2: हमारे पास तो साहब जो है हम दो भैया हैं और हमारे पास 230 बीघा जगह है।
1: अच्छा खाली खेत जैसे गर्मियों में रहे थे तो इनमें अपने किसान भैया के लाने कौन कौन से काम करना चाहिए?
2: अब कम को तो साहब जो है कि तुम भिंडी लगा लो और टमाटर लगा लो, बैंगन लगा लो और सब्जियां मतलब बहुत से कर सकते हैं करने वाले।
1: या तो बात भाई के जिन भैया के खेतों में जैसे पानी है तो बात तो भी जी काम को कर सकते हैं, जिन भैया के खेत में जैसे पानी नहीं है तो भी आप खेतन में जैसे कौन से काम करें कि आगे आने वाली फसलन में जो है उनके लाने अच्छी पैदावार मिले?
2: अब भी जो है आप देखो पानी जमीन में नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, तो बैठे ही
1: जैसे अपन गर्मी की गहरी जुताई,
2: हाँ गहरी जुताई कर लें जैसे जो है प्लाव से जुताई करा ले तो बस जमीन की पंटा पंटी हो जाते तो बाहर फसल अच्छी होते।
1: तो जो काम को आदमी करना चाहिए वो दूसरा काम को अपन क्या कर सकते हैं?
2: हाँ तो मेहरबानी कराने जाइए।

0: फायदा होता
1: बाद फायदा जो है पानी जो है खेत में ऊपर को बरस गाओ तो जमीन में रुके रह गाओ तो पानी जमीन में बैठ गाओ तो बाद में नमी रहे तो बस लाभ मिले।
0: और एक काम और भी अपने जैसे मिट्टी परीक्षण है तो मिट्टी परीक्षण भी अपने किसान भैया के लाने कराना चाहिए।
1: बिल्कुल कराना चाहिए।
0: बाद का फायदा है
1: बाद फायदा है कि मिट्टी परीक्षण हुई है तो बाद में जो है आप में जो कमी है तो बाकी कोई चीज दे सकते हो तो बाद में फसल अच्छी हुई है।
0: तो जो काम किसान भैया के लाने करना चाहिए। और दादा भाई पास तो खेती तो है और जैसे अपन देख रहे हैं कि आवांगे अभी बारी जो है फसल है खरीफ की तो बाद में अपन खेतन में कौन सी तैयारी करें अपन कौन सी फसल की बोनी करेंगे।
1: अब खरीफ है अभी तो
0: खरी बहेंगे हाँ। तो फरी बहेंगे तो बाकी लाने अपन जो है तैयारी कैसे करेंगे।
1: तैयारी कैसे करेंगे आप जाए सूखो खेत को अकवाएं सूखे हक दे बाकी बरसे तुरंत बंद करते हैं।
0: तो बाकी लाने अपन जैसे फरी हैं तो फरी को जो बीज है वो अपन वो घर को लेते हैं कि बाजार से लाओ थे।
1: देखो साहब कछु की व्यवस्था आज के पास जैसे बड़े किसान है तो वे घर को रख ले रहे हैं और जो छोटे मोटे किसान है बेच दे रहे हैं फिर जा भी रहे खरीद रहे हैं।
0: तो अपन अपन जो फरी को बीज अपन अपने खेत में डाल भी लाने कहाँ से लाओ थे।
1: हाँ वो तो अपन जो है तो दुकान से ले लेते हैं।
0: अब जैसे अपन ने खेत में खेत की जुताई कर ली अपन ने तो खेत तैयार होगा अब फरी अपन बीज ले आए अब बात आओ तो बोनी की तो बोनी को तरीका अपना फरी को का रहे बोनी में।
1: बोनी को तरीका हमारा जो ये मतलब खेत करा रहे और ट्रैक्टर से बोवा देते सीडर से बोवा देते कोई छिड़काव दे रहे।
0: तो जैसे अपन सीडर से जो बोनी कराते हैं और अपन जो छिड़कवा विधि से बोनी कराते हैं दोनों में अच्छी विधि कौन सी है।
1: अच्छी से सीडर भी अच्छी होता है
0: सीडर से अच्छी कैसे अच्छी माना दे
1: बाग लाने दानों में जमीन में चलो जाते पूरे दानों जमे आते और छिड़का की पावनी करा था कभी ऊपर रह गाओ कभी नीचे रहो ऊपर वाला तो वैसे ही कभी चरे उखा गए।
0: अच्छा अपन बीज की मात्रा की बात करें तो छिटकवा विधि में बीज ज्यादा लगाते हैं कि सीडर से बोनी करते वहां ज्यादा
1: छिटका में ज्यादा लग जाते बीज
0: तो जैसे अपन बात करें एक बीघा के बीज की तो एक बीघा में अपन मूंगफली को कितने बीज डाल रहे हैं।
1: 20 किलो बीघा।
0: तो अब जैसे अपन ने बोनी कर दी अब बोनी के बाद में जाके अपन देखभाल कैसे का करते हैं।
1: देखभाल जो करने के मतलब अब जो बोनी कर दी अब पौधा जमे आओ पौधा जमे आओ बाकी बाद में अब बारिश हो गई तो फिर धान जमे आओ वहाँ गाना दे दो गाना देने के बाद में फिर खुलो छोड़ दो फिर पानी बस गाओ फिर दोबारा से अगर खरपतवार वहाँ में जम रही है तो कुदरा से गुड़ाई कर देते हैं और कुदरा के बाद में फिर हो जाए ज्यादा पूरा तो फिर निराई कर देते हैं निराई के बाद में अगर नहीं बनता तो दवाई देते हैं।
0: वहाँ में अगर अपन बात करें लागत की तो वहाँ में भाई पूरी लागत लगभग कितने का जाता है।
1: लागत तो साहब देखो वहाँ में तो जी कोई जैसी लगा ले मतलब
0: अच्छा वहाँ में कोई रोग बीमारी का चुआ हो तो फरी में
1: बड़ी बीमारी आओगे तो दवाई ले दे रहे।
0: तो जैसे वहाँ में कौन कौन से रोग बीमारी आते हैं।
1: अब बीमारी वहाँ में जो आते हैं वो मर जाते पौधा पौधा बड़ा भाव वो मर जाते
0: है ना।
1: हाँ।
0: और जा मैं ये बताओ भाई जैसे अपने फरी की बोनी कर दी तो वहाँ में कितने समय लगा था पहले आने कितने समय बाद अपने पास जो है क्योंकि पैदावार मिला था
1: तैयारी हो जाती है मानो अब आप बताऊँ की बाकी आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक में बैठे पाँच महीना बैठे वो
0: पाँच महीना
1: फरी निकाल।
0: अच्छा जाकि पैदावार कैसी होता पैसे
1: पैदावार बढ़िया होते
0: अच्छी पैदावार और भाव कैसे रहे थे।
1: भाव की बात जो है कि 55 की बीच जाए 40 की बीच जाए 45 की बीच जाए इसे घूमी चलनी है।
0: तो दादा आपने जो है भाई किसान भैया के लाने मिला था अच्छी जानकारी दी के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो अपन आ गए हैं जो भैया के पास और जो भैया से जाना था सबसे पहले अपना नाम तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
2: हमारा गेहू नाम
0: गेहू जी अपनी उम्र कितनी हो गई।
2: 40 साल
0: अपनी उम्र हो गई। और अगर अपन बात करें अपनी खेती की तो अपने पास खेती की जमीन कितनी है।
2: 5 बीघा
0: जमीन अपने पास है। और जैसे अपन खेती करते हैं तो अपन तनक पड़े भी हैं।
2: नहीं पढ़े
0: पढ़े लिखे नहीं है ना। तो खेती अपन जो है कैसे साल से कर रहे हैं।
2: खेती तो आप मान लो कि बचपन से ही कर रहा है जब से जन्मे हैं खेत को वर्षा को कम ही नहीं है।
0: तो खेती अपन कर रहे हैं खेती जैसे अपन कर रहे हैं तो खेती के संग पशु सुई पालत हैं।
2: यह पालत पशु का नहीं पालत भैंस है ढूर बचिया है चेब बुकैया है सब लगत।
0: तो जो अपन जैसे खेती के संग जब पशु पालत हैं तो खेती के संग भाई किसान भैया के लाने पशु पालना चाहिए।
2: नहीं पालने चाहिए
0: जहाँ से भाई किसान भैया के लाने का फायदा हो।
2: अरे अब भाई की होते दूध पाए की इन्होंने भैया अपना खाद पिया रहा था काम चला था।
0: तो जो तो पहले आने परिवार में दूध घी मिल जाते हैं लेकिन अपन बात करें खेती के लाने पशुओं से कम मिलते हैं।
2: चल भी घास पाए बिना हो जाए
0: तो पशुओं के लाने मिल गाओ। और पशु को जैसे गोबर है खाद मिल
2: जाता है
0: ना। तो जैसे अपन गोबर की खाद अपन खेत में जैसे डाल दें तो बस ये फसल की पैदावार कैसी रहे।
2: बस बड़े बड़ी रहते फसल तो
0: कौन सी अच्छी है गोबर की खाद अच्छी है रासायनिक खाद अच्छी
2: गोबर से अच्छा कौन नहीं है खाद
0: कैसे
2: गोबर को ता डादु खाद होना तो फसल की पूछ नहीं का है,
0: जैसी पैदावार
2: बढ़िया पौधा होता है बढ़िया रोना बाकी हाँ है, वो होते
0: स्वाद की बात,
2: स्वाद भी टॉप लगत है वो की तो बात ही अलग है।
0: और भाव की बात करें अपन, हाँ भाव अपने भाव की बनते जो पैदावार होता है वो भाव भी अच्छा,
2: भाव भी सही पड़ा, ये मिला था तो दानों अच्छे
0: तो जहाँ में कहा है कि जैसे अपन गोबर की खाद से अपन खेती कर रहे हैं तो वहाँ में पैसा की बचत भी तो
2: होना ही रही है ना, तो पैसा की पूरी बचत होती
0: है ना। और रासायनिक खाद उर्वरक अपन बाजार से पैसन से लेके आए तो वहाँ पैसा खर्च हुए, लागत लगे, वो गोबर की खाद अपन घर की अपन खेत में डाल दें तो काम करें। अच्छा जैसे अपन गोबर की खाद एक बार खेत में डाल दें तो वह कई साल में जो है काम करा,
2: कम से कम वो 3 साल तक काम करा,
0: 3 साल में काम करा थे तो जब काम को अपन करा थे
2: जब तो अपन खूब करा था।
0: अच्छा जैसे पशु को पास पाले हैं अपन ने, आगे बरसात को मौसम आएगो तो जैसे पशुओं में कछु बीमारी हो जाते हैं तो वहाँ को लाने अपन टीकाकरण वगैरह कराते हैं,
2: नहीं करवा इलाज पानी करवाने का।
0: हाँ अब जैसे भाई पशु पाले हैं अपन ने, अब पशुओं के अब रहवी सेवी की अपन ने क्या व्यवस्था कर रखी है?
2: अब व्यवस्था का है कि जो टीन सेट है कि जो इमड़वा सड़वा डाले थे पानी मनी डाट दूध दे तो और का व्यवस्था है।
0: तो बाकी सार की साफ सफाई अपन कैसे कैसे कब कब करें?
2: साफ सफाई तो बाकी मान लो कि सभी नहीं करते हैं, सभी ने कसन जाए
0: हाँ दो टाइम कर रही साफ सफाई। अब बात आउट है वो कि जैसे उनके खावे पीवे की चारे पानी की, तो चारे पानी की अपन कैसी का व्यवस्था पाए पशुओं की राखत है?
2: अब सारी की जो ये भूस डाल देते हैं सानी कर देते उन्होंने बस पानी पिला दी तो
0: अब जैसे दुधारू पशु हैं दूध देवे वाले पशु हैं तो इनको दूध बनो रहे या इनको दूध को उत्पादन बढ़ जाए है तो बाकी लाने अपन बिन के लाने ऐसी कौन सी चीज़ खवाते हैं जिससे जो दूध को पैदावार अपने लाने बढ़त रहे?
2: खर पीना है जो कागज है बाजरा है जो ही खुआत भाई से बड़ा दूध और खाए से बड़ा।
0: अब जैसे गुड़ है गुड़ भी कबों को
2: दिए गुड़
0: और नमक
2: नमक भी दिए
0: और तेल
2: तेल भी दिए
0: तो ये सब चीज़ अपन क्यों दिए थे? अब पशुन के दूध की पैदावार बढ़ दे
2: हाँ बैकिलाना दिए थे ना दूध बढ़े वो मतलब फैट बढ़े।
0: अभी के बाद बात आओ थे पशुअन के जैसे कम पशु बीमार हो जाते तो बीमार हो जाते तो अपन के लाने जी कैसे मालूम चला थे वो पशु जो बीमार हो
2: जब वो रोथ नहीं है चरत नहीं है जब पता परत है
0: तो
2: दिखवा था डॉक्टर को बुलाते हैं ठीक हो जाए कछु देसी दवाई दवाते हैं देसी सुनाई तो फिर इलाज करवाते हैं जो ही करते हैं।
0: केवे को मतलब जो है खेती के संग किसान भी इनके लाने में पशु पालना चाहिए,
2: इन पालना चाहिए जरूर लगा था
0: जरूर पालना चाहिए ज्यादा फायदा है
2: है ना।
0: तो भैया देखो आपने यहाँ पे किसान भैया के लाने मिला तो अच्छी जानकारी दी के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। वो किसान भैया देखो आप आ गए हैं अपन चला चला जो मैन के पास तो जब मैन से अपन जाना थे इनको नाम तो मेरा अपन नाम बताओ।
3: मेरा नाम है पुनिया।
0: पुनिया मैन अपनी उम्र कितने हो गई
3: ये 50 साल
0: 50 साल अभी उम्र हो गई। अब अपन बात करें 50 साल में अपन जो घर में आए जैसे अपन घर में भी रहे मायके में भी ससुराल में भी रहे तो अपन ने खेती को काम तो दो तरफ देखो
3: बिल्कुल।
0: तो जैसे अपन खेती में अपन सवेरे से जैसे उठाते हैं तो सवेरे से जैसे कौन कौन से काम कराते हैं?
3: सवेरे उठे से अपन झाड़ू लगाए झाड़ू लगा के चूल्हे में चौका देकर रोटी पाऊ कर और जैसे गंजन लगाने से गंजन को लगा फिर चरबी डालने बिना डालने में भगा भी जाने भगा के आया पा इन्होंने फिर रोटी चूलो करने फिर आ गए तो फर में जैसे जेठ मास से पा मैंने बांध दई चरबी डाल दो उन्होंने पंख प्याट पिया दो।
0: तो 20 साल पहले अपने गांव में अपने घर में खेती कैसे होती?
3: भैया महाराज हमारे तो खेती होती से पौधे बहुत कुटकी कानी मानी चलाते ये समा मामा ये सब बहुत और अपना कराते वो पीसाते
0: हाँ मतलब पीसो काम भी करते हैं।
3: हाँ पीसो महाराज हमने तो पीसो है।
0: अच्छा
3: हाँ
0: का अनाज पी सकते हैं?
3: मका पीसी ज्वार पीसी कोदे पीसे कुटकी पीसी
0: चकिया से
3: और धरी भी है मैं चकिया अपना ही पीसा सपान धरी है खूब करो।
0: अब जैसे अपन बात करें आगे आगे वाली फसल की तो आगे आगे वाली फसल में अपने इतने कौन सी फसल होते हैं?
3: अब तो जो फरी बहन लगे
0: फरी होते अब फरी होते ना तो आगे लाने अपने बीज की तैयारी अपन कैसे करते?
3: ऐसा कर जैसे अब तो पहले हाथों से फुरत थी बीज अब जो ट्रैक्टर चलेगा सो ट्रैक्टर पर कढ़ा लें और अपन को आप फटाते हैं धर देंगे और अब जैसे बस सब हो गई अच्छी खेत बना रखा है सुने ना फरी उठाते हैं ट्रैक्टर से बह दें।
0: अब जैसे भैया भाई खेत में खेती करेंगे फरी की तो बाँ में अपन कौन कौन सी मदद अपने किसान भैया ही करेंगे?
3: फर में हमारा तभी बीज है जैसे हम ट्रैक्टर से बाए तो भाई ऊपर डरी नहीं तभी तो बिना जाके ऐसे दाबने दाबने बिना के दब जाए
0: दब गए। अब आगे बाद जैसे अपन ने देखे उग गया है उग गया है तो फिर वहाँ में जैसे घास कूरो भी उग गया
3: सब नींद लगा
0: अपन खुद ही नींद
3: मेरा खुद नींद नींद आते हैं हम तो चाहे घाम पर हो चाहे कैसे नींद आते हैं और गोड़ा थे कुदरत से गोड़ा थे।
0: और जैसे अपन पशु पले हैं तो पशु जैसे पले हैं तो अपन पशुओं को कौन कौन सा काम सवेरे से कराते हैं?
3: सवेरे से उठे सब

0: जैसे लगा था गाय से दूध लगा लो उन्होंने माही भा लो और फिर बच गया ना ही लिए सफा गाय ने पिया दी और को आगा से दे दी
1: फार्म में गोबर भी रहते हैं चारों पानी फैल जाते तो बाकी साफ सफाई
0: बिल्कुल साफ जैसे चारों फैल का पूरा कर का पूरा झाड़ के फेंक दी
1: और इनके अपन जो चारे पानी की सानी की व्यवस्था कराते हैं तो वो अपन कैसे का करते
0: हैं सानी भैया से क्या सूखा मिला दें कि ना पानी डालने हैं उसमें सानी कर लें फिर चून डाल दें सुबह आटो बात चपा के जाए अच्छा खा ली
1: बाकी संगे हरों चारों अपन मिला होते हैं
0: हाँ हरों मिला उसे काट ली जैसे कट गया कुटी कर ली हाँ कुटी कर
1: और जैसे बाकी पशुओं को जैसे गोबर हो जाते हैं तो उनको अपन गोबर को का उपयोग करते
0: हैं गोबर को जैसे अपन लगे बस जेठ मास कंडा पास ली उपला उन्होंने पान घूरी में पटक दी सब पान भर के उन्होंने खेत में डाल दी
1: तो कंडन को का उपयोग है
0: कंडन को जो है बना ली
1: अच्छा ईंधन के रूप में उपयोग करा था और जैसे गोबर अपा इकट्ठो होगा तो बा को का उपयोग है
0: सुबह को जो उपयोग है खेत में पटक दी थी गाड़ी गाड़ी बैल से पटक ली और जैसे नंगे गाड़ी बैल से ट्रैक्टर लगा था बाहर से पटक ली
1: तो खेत में डाल दिए खाद बन जाते तो आप तो मैंने बहुत अच्छा काम करा था किसान
0: नहीं हमारे लगा तुम तो खेत में पटक दो हमने ट्रैक्टर लगा था पूरा खाद और मुँह हम बरबर कोई गंजे ना आती हमारे में तो डेयरी पे आगे जिंदगी पे हमारे सास की मंजूरी कर मंजूरी मर गए
1: तो क्या भी मतलब जाएगा अपन देखो खेती में काम कर रहे हैं तो आज भगवान की कृपा से पाए मोड़ा मोड़ी भी है जमीन भी है खेती भी है और सब परिवार में अच्छे से रह रहे हैं
0: अच्छे से रह रहे हैं
1: ना। तो बहन आपने भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भैया अपाई जो है बूढ़ी बरोद गाँव से हो रही चलवी की बेरा तो सभी किसान भैया से कहते हैं राम राम
2: राम राम राम राम
1: भैया अपन सुन रहे थे किसान वाणी गाँव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत जिला शिवपुरी के ग्राम बूढ़ी बरोद और विकास खंड शिवपुरी है तो जहाँ में प्रस्तुति थी भैया विनोद कुमार त्रिपाठी और आओ भाई किसान भैया के लाने जो है मनोरंजन के लाने रूही बहन का चुप आप सुनवा
3: हाँ सुनवा रहे हैं भैया अपन सुनाते हैं जो लोकगीत

0: और किसान भैया देखो भाई, किसान वाणी गांव से हो रही भाई, चल भी की फिर
1: तो
0: तो
1: सगाई
0: भाई
1: भैया बहन से अपन ले लेते हैं आज्ञा
0: आज्ञा तो जो मंगरू भैया की
1: और
0: और
1: रूई बहन की।
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम,
0: जय
1: जय
0: जवान
1: जवान,
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: इसे हम प्रदेश से बोल रहे हैं। 8 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आप भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
5: देखिए, अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है। पिछले अप्रैल में हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही एक सक्सेसफुल वो विजिट रही। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये 5 देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा।
4: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
5: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया

0: एशिया व्यापार वहां से होता है, भारत का 40% व्यापार वहां से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
1: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर तायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगी।
0: पिछले 1-2 वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है, 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है, ये नाम क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ्स इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकिल इंडोनेशिया में है और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकिल की आवश्यकता पड़ती है, और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
1: अम्बेसडर तायल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
0: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं, गांव-गांव में पहुंची हैं, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है, जहां भारत के आप यूपीआई से पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं, अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीज में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर या भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है, तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेली कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आजकल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
0: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है 21वीं शताब्दी, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले 1-2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया

0: टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन हैं और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में, हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहाँ भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं। वहाँ आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
2: पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: अम्बेसडर तयल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है। तो इन दोनों कदमों को आपके नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
0: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है। जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं। तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको, हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहां के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
1: आखिर में अम्बेसडर तायर, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
0: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्बरन मंदिर है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने का जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसमें गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था। उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
1: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला नगमा आशिकी फिल्म से कुमार सानू की आवाज, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

अनुराधा पौडवाल, पंकज दास और साथियों की आवाजों में अब सुनिए बाहर आने तक फिल्म का नगमा। इब्राहिम अश्क के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

सनम बेवफा, डिजिसुनियस फिल्म से विपिन सचदेवा को सावन कुमार के लिखे गीत की धुन बनाई है महेश किशोर ने।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 8:42 होने को है, समय है अंतराल का।

0: मनमानी,
1: भ्रष्टाचारी दल वाले हैं दल दल में अभिमानी।
2: फीके पड़ गए भ्रष्ट के तेवर, डूब गई है लुटिया, अब आजादी की सांसें ले हर घर में हर बिटिया।
0: आजिए

0: स्वर्ग की धरती कश्मीर की।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है, विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
7: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and six go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा बहरी सलामती तजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीक़ेकार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
3: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, भारत की ग्रोथ में

0: जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
0: सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जुजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मजबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज़ करने का अज़्म किया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے

0: नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की ज़ेर क़यादत मंसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक ज़ेर ज़मीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। ज़ेर ज़मीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुब बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासर कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दो तरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 में 0.3 और स्मॉल कैप 100 में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को

रहमत की घड़ी है, आओ मस्तानों, बटेगा सदकाए खैरुल बशर।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।

0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना, चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी। प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनिए बागी फिल्म से ये गीत, आवाज प्रमिला गुप्ता की, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए जुर्म फिल्म का ये गीत। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

अमित कुमार की आवाजों में सुनिए पुलिस पब्लिक फिल्म का ये नगमा। असद भोपाली के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। राग है मधु कौस, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। राग था मधु कौस, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में नेपथ्य था। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।